ግለሰብ ዛን ሽማኑ አሩ ኩዋዲ ካዱ ተማኒ ደመነና ሽማኑ ኦል ፓይቨቶ ሩሁ ሽማኑ ባህርት ካ ባህሪ ሀ ሽማኑ ኢንዲያ አርሱን ኮ ነብቲ ሚቲንግ ፓርና ዋ ዋኑ ሲ ሀማሪ ዴሽ ኬ ሰምፐንታ ኒ ዶክታን ከርታ ሆ ሽማኑ ኒ ቡሩዋ አሩ ኦክቲማግታ ጋንዋ ሽማን ኢቻዋ ሽማ ሶና ባአናም ግሊዋቶ ኮና वह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है या नागसा को चुबत भी है हिमालय के शिखरों में से सागर माथा सबसे ऊंचा है हिमालय में आदि छोट रहा जिसे तो

0: आज एवरे संशुभत पाया। यही सागर माथा संसार के साहसी पर्वतारोहियों को आकर्षित करता रहा है। यह माउंट एवरेस्ट द्वारा आवश्यक कमत में आदि दौड़क तरंगी गीत को बाघ हाथों को स्वागत पाया। गिरिराज हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है। आदिवानी राजा हिमालय इंडिया में मुकुट हुआ। नासिमो या हिंदी लेस में बाहर हिंदी खतरा को फिर आना मंगी जेखाई श्रृंखलाओं न्योठोवा आबिदम बाबक्तो जोग पाबरी प्रहरी मिठन गप्पा बनाजो के रखी गप्पा वाचमेन ने देखो ना गना संपन्न पा वन गामवा चिमान मिठा योग बन और गला बा कंट्रीब्यूट का शिखर पिक पाबरी पुचोत पर्वतारोही आबी दोगता बनाउटिंग आकर्षित गिस्को नाता बगिस्को सल्ला एट्रका ने जेको नागाना इंग्लिश गिरिवाज आबिवान राजा उत्तर सलग्रो पश्चिम सलुरान पूर्व सलावन श्रीनी गाबान बगंग छोटी मल्टी बाबरी कुछोत संपूर्ण चुगनक प्रमुख मोसंग पा विफल चुसोकजा अभियान एक्सपेडिशन पर्वत आरोही आबी गादोगता उपकरण बाबोस टूरा संग पा आंगा नासिमा को आपसे कुछ चीज सुनिए उन्हें नासिमा आपसे कुछ चरण तक तो आप बात सुन को ना हिंदी चीज सुनिए ना हिंदी चीज आगे तक तो बाद में आप को इंडिया सोनी मुकुट उन्हें ना
1: हिमालय आने को इंडिया में मुकुट उन्हें ना
0: कौन सा पर्वत को भारत का मुकुट कहा जाता है?
1: गिरिराज हिमालय को भारत का मुकुट कहा जाता है।
0: अजनी आसोनी सलगोनी सीमा चिता सलीरामनी सलारामना हिमालयनी रूपारा बारिता
1: अजनी आसोनी सलगोनी सीमा चिता सलीरामनी सलारामना हिमालयनी रूपारा हजार रूपा मीटर जमीन में मिट्टी में रूपा।
0: हिमालय पर्वत की लंबाई हमारे देश की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व तक कितनी है?
1: हिमालय हमारे देश की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व तक लगभग 3,200 किलोमीटर की लंबाई में
0: फैले हुए हैं। हिमालय में आदि तुमरांग बा आदि वक्तों जल के तारांग बारिता गना आरो वारंगना माय माय रंग
1: हिमालय में आदि तुमरांग को बाकथान बकेस वाला कांग पा भूत हिमालय यान चुरात कपा

जम्मू कश्मीर में लद्दाख मुकदमा परामर्श सुनाने में आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख मुकदमा परामर्श सुनाने में आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर प्रदेश का लद्दाख क्षेत्र कौन सा पर्वत श्रेणी पर है? जम्मू कश्मीर प्रदेश का लद्दाख क्षेत्र महाहिमालय के भाग में है। बाबू आप बिजनौ

0: आउटर हिमालय गम्मत को माय मंगा बा बादलू मंगा
1: आउटर हिमालय गम्मत को शिवालिक निये मंगा
0: उप हिमालय के संपूर्ण भाग को क्या कहते हैं?
1: उप हिमालय के संपूर्ण भाग को शिवालिक कहते हैं।
0: हिमालय को सलीरामुनी सलावामुना बारिता बाग बगना मना
1: हिमालय सलीरामुनी सलावामुना बाग तथा बके स्वर्णा मना वेस्टर्न हिमालय सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय।
0: हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक कितने भागों में बांटा जा सकता है?
1: हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक तीन भागों में बांटा जा सकता है, वह है पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग।
0: वह है पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग। हिमालयनी मौसम का आवृत छोट बा पीक करा जेका माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा दाउलागिरी आरो नंदा देवी यरानी चुवारा बाबिता तेवनपनी
1: सागर माथा बा माउंट एवरेस्ट हजार छे पुछा छे सुखबी छे मीठे कंचनजंगा हजार छे पुछा बुना सुखबी छे मीठे दाउलागिरी हजार छे पुछा सा पुरुक सिनी मीठे आयो नंदा देवी हजार श्री रुचा छे श्री नीचे शुभता हुआ।
0: हिमालय की प्रमुख चोटियां जैसे सागर माथा कंचनजंगा दौलागिरी और नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है?
1: सागर माथा 8848 मीटर ऊंची है, कंचनजंगा 8548 मीटर, दौलागिरी 8148 मीटर और
0: हिमालय ने जोगबाग पा मौसुंग पा चिरी मारांगा माया
1: हिमालय ने जोगबाग पा मौसुंग पा चिरी मारांगा गंजेस यमुना सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलेज आरो ब्यास इंद्रावती चंद्रगंगा आरो झेलम।
0: हिमालय से निकलने वाले प्रमुख नदियां के नाम क्या क्या है?
1: हिमालय से निकलने वाले प्रमुख नदियां है गंगा यमुना सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलेज ब्यास इरावती चंद्रगंगा और झेलम।
0: सागर माथा को मायना माउंट एवरेस्ट में मुआहा
1: रिचा चीचे सब्जी रेसियो इंडिया ने स्कंग का चीफ सुपरवाइजर सर जॉर्ज एवरेस्ट या सागर माथा को नियंदा इंस्पेक्ट काइंदा या आवी बाबुता छुआ उखो थुआ हा या तुमो इंदिसा या आवी खुचत को माउंट एवरेस्ट ने मुझा।
0: सागर माथा का नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा?
1: 1840 में भारत के प्रथम
0: महापर्यवेक्षक
1: सर जॉर्ज एवरेस्ट के पेंशन में नापी गई थी और उन्हीं के नाम पर इसे एवरेस्ट शिखर कहा गया है।
0: 1840 में भारत के प्रथम महापर्यवेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट ने निरीक्षण में नापी गई थी और उन्हीं के नाम पर इसे एवरेस्ट शिखर कहा जाने लगा। सागर माथा बा माउंट एवरेस्ट को बाहा आदि दोगतारा गादोना जो थून था है अंबिबा चुसुक जहा अंबा की चुसुक की जा गप्पा राओ ने सप्तमी मंदिरा में बीमों को आगा नप्पो
1: बाहा मंदिरा में माउंट एवरेस्ट को गादोना

सागर माथा पर विजय पाने के लिए पर्वतारोहियों ने अनेक बार प्रयत्न किए। ऐसे ही अनेक अभियान बल जो विफल हुए, इन्हीं से

राम का वाय थे। हाँ, कई पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया, किंतु यह शिखर अजय ही रहा। ऐसे व्यक्ति में से कैप्टन मॉरिस वेसन

0: एवरेस्ट अभियान में ही प्राण गंवाए थे। एवरेस्ट को गाबोना बाडिया आरोसानी दो बाथिन छुसोक छिंगा है।
1: एवरेस्ट को गाबोना स्कामता छुसोक छिंगपा दो लावा कोने जॉन हन मिनी दो बाथिन हुआ।
0: एवरेस्ट पर चढ़ने में सर्वप्रथम कौन सा दल सफल हुआ?
1: सर्वे माथा पर पहली विजय कर्नल जॉन हन के दल को प्राप्त हुई।
0: एवरेस्ट को गाबोना कर्नल जॉन हंट ने आबे गुप्ता दो बाथी मनी सावरा चुसकता वहा।

0: मनुष्यों में कौन कौन से गुण होने आवश्यक है?
1: वास्तव में पावर रोमन एक कला है। इसके लिए तीव्र इच्छा शक्ति, निर्भरता और परिश्रमशीलता तथा
0: सहिष्णुता होना अनिवार्य है। वास्तव में पर्वतारोहण एक कला है और इसके लिए तीव्र इच्छा शक्ति, निर्भरता, परिश्रमशीलता तथा सहिष्णुता होना अनिवार्य है। आपने दोनों राम माय माय बोस्टुरा को नंचम पा
1: आपने दोनों बता माय पा लकपा जिनको सुनी बकना दखला बुजु सुनी विशु लकपा लिथा सुनी मनु बता व्यापुने सार दुगने गलना चुस्मा ऑक्सीजन मास थंडु स्टोव स्लीपिंग बैग आलो अंदा कपा रंको नमा।
0: पर्वत रोहन के मुख्य उपकरणों के नाम बताइए।
1: ऑक्सीजन मास्क, बॉडी के लिए तंबू, सर्फ, स्लीपिंग बैग आदि।
0: यान हिमालय और पर्वतारोहण बाबे दोग परानी लेसन यानो आ या लेसन को नाचिमा बा हिंदी कथा को मान रखा है वन नी मीनिंग को आ बाबे नाचिमा को सिग्नो श्रृंखला में उठोगा माइटन
1: Abidin ba range.
0: Abidin ba range. Jika ni mesti range ni agak nama. Perhari ni utol mana?
1: Wajin mandi lupa dan
0: nanti tu baru kita. Sampai nanti.
1: Gamang sih mana?
0: Gamang sih mana sama? Bayar mana kita deh? Dikit utol mana kita? Bayar utol mana kita bos tu nama? Wanu wan. Uci mana cah? Himalaya orang. Yopan. शिखर
1: पर्वतारोही
0: आकर्षित गिरिराज
1: राजा
0: उत्तर उत्तरा सलगो पश्चिम
1: सलवान
0: पूर्व
1: सलवान
0: श्रेणी पर्वत आरोही उपकरण मैं खुबे यह हिंदी लेसन को मान रखेंगे सुनने वाले सभी कुछ न कुछ फायदा मिला होगा ऐसे ही विश्वास करते हैं। और आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार
1: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें इन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारे लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक,

0: केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी, हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखा और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई ओडिशा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र के कथित लीक होने के संबंध में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मामला पिछले साल अक्टूबर में ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुआ था। बाद में ये मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के किशोर न्याय समिति यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन कर रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। दो दिन की इस बैठक में पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने जन भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में दो विधान सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट अपने पास बरकरार रखी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम के नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए कल मतगणना हुई। इन 6 सीटों पर उपचुनाव मंगलवार को हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory section of the two-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centers to be developed as centers of community participation. He said families living near Anganwadi centers should be encouraged to contribute on special occasions by sharing nutritious food, toys and other locally relevant items for children. The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Mr. Prasad noted that the CJP had previously been granted

0: के जनों पूंजे उनके सेठ,
1: और हमेशा हमारी फिक्र करना। वैसे उनके जमा पूंजी बैंक में भी है,
0: और क्लेम करना मुश्किल होगा।
1: अब भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ, और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
0: आरबीआई करता है।
2: नसीमा मन हो घरवाली बाहरवाली फिल्मी गीत खोता सिखाएंगा वन उदित नारायण अनिराधा पौडवाल और अनु मल्लिक ने उनका गीत नेपाल की ठंडी हवा।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के

0: केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन में दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें इन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारे लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन है, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल है वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस है। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वही सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवानी शाह, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग, जालिम लोशन।

0: सर्जन डॉक्टर पहल जानकारी के लिए सभी इंग्लिश सर्विसेज विजिट कीजिए डाउनलोड सभी भारतीय ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल

0: भूतपूर्व वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ये अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
1: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए 3रा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचाउडु विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंच के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज के इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह यह दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
3: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
2: राज्य के गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
4: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
2: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
5: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों को सब समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना गांव और जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
2: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम करकेटा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
1: आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी
1: 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को मानना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुँचाती है।
2: www.cpportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवि पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar in National Capital today. Tightens security across National Capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Pootul Sonowal assures country's first ever medal at World Bowls Champion of Champions after reaching semi-finals in Australia. And in men's cricket, West Indies beat India by 6 wickets in the second T20 international to level 5-match series 1-1. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centers to be developed as centers of community participation. He said families living near Anganwadi centers should be encouraged to contribute on special occasions by sharing nutritious food, toys and other locally relevant items for children. Discussing issues related to women's safety, Mr. Modi advised the development of age-appropriate modules for children on women's safety, dignity and empowerment. He also stressed the importance of preventive measures through coordinated efforts across various departments. Prime Minister Modi has stressed the need for young people to continuously upgrade their skills and adapt to emerging technologies amid rapid technological advancements. He made these remarks while interacting with members of Team India who participated in the World Skills Competition Shanghai.

0: आकाशवाणी ठुरा चासाता इकना तुम सेंग पा सकांटी कुन दाल नि प्रिंगनाम ठुरा प्रोग्राम नारम चाक्सुआ सकांटी नान प्रिंगनाम दाल हजार गुनी को ग्रुप टॉक में सिनी अक्टूबर जानी चिकन तारीख सोनी बर प्रिंग दाल नि प्रिंगनाम ठुरा प्रोग्राम उन असीम वेदर हजार निगमन आगना निरंग को खना सुना मत गेन
1: वेदर हजार स्नेगो अंचिंग ने बलशी ने खारी ने सोमाई रंग दिंग्रांग दिंग्रांग किंगनी गिप्पा असीम वन मंदिर जंगीना माल मथाना किंगनी गिप्पा असीम जेखा सांतन फेतनी सिंधुगानी खब चिर छानी छी बन्ना रिहानी बलवार अक्कानी मक्खा कंप्रेतनी स्थिल उन्नानी बलमन दूरी और वन धक्के तारे रुवारा यह रंगा नचनी बलशीनी खरीओ दंथा दंथा मंदेने जंगीना खिनबिनी गप्पा आसेला वा जेको इंग्लिश छी वेदर हेजर्ड्स ने आगना दंखारी नी सुमायो अंचन

Ha ha.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजीपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने सीजीपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों का और आश्वासनों का पालन नहीं करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति और लोगों की सुरक्षा तथा नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात तो संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल है। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखा और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के डीसीपी बी भरत रेड्डी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 जवान तैनात किए गए हैं।
1: स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल है वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस है। प्लस हमने सीओपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता

0: करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिल गावत्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और यातायात और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और वितरण अनलोडिंग तथा आयात से संबंधित लेन देन को अनधिकृत किया गया है। अमेरिका के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर को सम्मानित किया। इस बीच इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने घोषणा की है कि कैप्टन स्मिथ को उनके कार्यों के सम्मान में इसराइल का नागरिक वीरता राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा। मौसम विभाग ने केरल माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कारीकाल में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश झारखंड उड़ीसा पंजाब राजस्थान और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। खेलों में भारत के पुत्र सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के बरहम में विश्व बॉल चैंपियनशिप में देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित कर इतिहास रच दिया है। असम के 43 वर्षीय पुतुल ने पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर यह उपलब्धि हासिल की। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said the decision to deny permission was taken in view of the party's previous failure to adhere to Delhi police guidelines. Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that Delhi Police will take appropriate legal action against anyone found violating the law. Meanwhile, elaborate security arrangements have been made across the national capital ahead of proposed protests at Jantar Mantar today. DCP Railway B. Bharat Reddy said that 334 government railway police personnel, including around 120 women personnel, have been deployed at 7 major railway stations in Delhi. Due to security reasons, the entry and exit at 45 metro stations will remain closed today till 6 p.m. However, interchange facilities will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi metro station. Namo Bharat train services between Saraikala Khan and new Ashok Nagar Namo Bharat stations in Delhi will also remain closed today till 10 p.m. During this period, Namo Bharat train services between Anand Vihar station in Delhi and Modipuram station in UP stations will continue to operate as per schedule. Furthermore, in view of the law and order situation, Delhi Traffic Police has also issued an advisory for traffic diversion in various parts of the national capital. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory section of the two-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centers to be

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहते हैं और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मेरी प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है, वास्तव तक जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेरे साथ आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्यों हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी, उनका नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: रोज साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैं कहने तुम्हारी चला।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या फिर स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

मुक्तसक अंत मन की वाल्ती अबे निया बे जग जग मामा खुबे खुबे सो सुखा ओने।

करती हुई वो बेडरूम तक पहुंची भी नहीं थी कि चाचा की रौबदार आवाज ने कानों में चोट पहुंचाई। बेतरह थकी हुई दिव्या का मन कर रहा था कि चाचा की पुकार को अनसुना करके सीधे बिस्तर पर पड़ जाए, लेकिन चाचा की हैसियत इस घर में पापा से भी बढ़कर थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि चौल में इतनी लंबी जिंदगी बिताने के बाद जब से टावर में घर लेने का सपना पूरा हुआ तो घर की एक मुश्त रकम का इंतजाम चाचा ने किया था। लोन अमाउंट भी उनका ज्यादा था। घर खरीदने में पापा की पूंजी कम लगी थी, जबकि दिव्या तीन भाई बहन मिलाकर पांच लोग हैं और चाचा के परिवार में विनोद भैया, चाचा चाची, कुल मिलाकर तीन लोग, मतलब ये एक आदर्श संयुक्त परिवार था। दिव्या सिर झुकाकर अपराधी की तरह सामने सोफे पर बैठ गई। विनोद भैया की लगाई आग चाचा की जबान के जरिए घर में धधक रही थी। उनकी लाल आंखें शोले उगल रही थीं और उसमें वो जल रही थी। ऊपर से तो वो बुद्ध बनी थी, लेकिन उसके मन में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ रहा था। दिव्या अपने आप से ही पूछ रही थी कि आखिर उसका दोष क्या है, जमाना कहां पहुंच गया है। स्त्रियां धरती के हर छोर पर पहुंच गई हैं, स्पेस तक में अपना परचम लहरा रही हैं। ये संकुचित सोच के चाचा लड़कों के साथ घूमने क्या चली गई, घर सिर पर उठाए हुए हैं। खुद तो चाची की सहेलियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर रस ले लेकर बतियाते हैं। हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेले इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मंद्र सप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझे कि नहीं। लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें। तुम जानती हो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था, अनगिनत खरोचे लगी थी। मालशेज घाट में देखे फूल मुरझा गए थे। बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया।

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशेज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही। इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी, जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन के मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निसंग पाया। डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैरा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था। बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती। वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

ओ दिव्या, हाय हाय स्वीटहार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूँ मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ड्रामा की रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओ अरे अरे, तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसे चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है, पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा, पूछ तो

कौन है? पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणो सर, पता है? प्रणो सर। अनमनी से दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? चल ना चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा की स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी? और एक रीडिंग बहुत जरूरी है। अपने आप से ही वो गुफ्तगू करती है, आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये। फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है? क्यों क्यों घबरा रही हूं मैं? अगर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है? आखिर समझ में नहीं आ रहा है, भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या। साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहां से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहां से आएगी ये रकम? दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर तक देखती है।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर आंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी, लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा, और किसके साथ रहोगी है? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन राइमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था, आंटी दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसके देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ राइमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा, कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराए शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो वहां पोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात

कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थी। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदे चिपक गई थी। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रस्तावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकाले खां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेलवे के डीसीपी बी भरत रेड्डी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 जवान तैनात किए गए हैं।
3: ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पर सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल है वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस है। प्लस हमने सीओपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़े विधानसभा सीट बरकरार रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आपूर्ति साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का नियंत्रण डीजल की कीमतों को कम करने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की।

Bye.

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी साथी ऐप।
1: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या फिर स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

0: सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर हुए या मागपा रंगारा मैं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को छोड़ेगे मु या रंगे ट्रेनिंग होना मेंबरशिप नी ट्रेनिंग मैं को मुक्सुना कैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप को मेंबर सक्सेसिंग होना बंग बना अरु या मेंबर रंगारा अंतम तमी मेंबर उगाने कम छाता नी रंग को वाशिंग मान के या मेंबरशिप ट्रेनिंग हो चुनो विशु मेंबर हुए मैं मैं रंग को तकनोना मैं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को दूंगे अरु या मेंबरशिप ट्रेनिंग को मानेंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को मैं के बिल्ला खत्म मांगे यानी ट्रेनिंग दूंगा IBCB ni training ko matnani jamanu isho dashi sutra ba aaj kuchhi aganu de gechkin niyam ko jarukna na je rangan vachangija meeting ka ani vachangija chumongani vachangija thangkha raswani vachangija chutlani vachangija likha se rakhiani ansing bal jokani aru rungthal anthalani bida PRI rango bakra achina entitlement aru scheme rango ukochina insurance scheme rango ba bakra na aru dungthang dungthang scheme jekai NSAP, crop loan, nariga ni gataba bishong may batak chaka ni koman china dako pa entitlement soga ka sustainable livelihood ba bojana gapa dake chaani rang ya gage kung niyam rang ko bishong jarak na nila jirakodi wamang tangka paisa ko namme jakhana changgeno tangka paisa ni dak chaka ni ko sokari ni gata bishong apply khana mangeno support ko mangeno aru success akapan na ba dak chakra kani ko odna mangeno tangka paisa chini jangi thangani yo nangchung notkapa oma uni gmin chini magpa rangna ba ya training bas kyani belonging gam chata gani gpa sector financial inclusion na jeni no sungko noko thangduatna gata wa mangna tangka paisa rangko bank mo link kae odni dakcha मंदिरांग पंगन यानी बीतमु मासिश्चतो ना उन्हें गमन आ ठीक सही यानी बीतमु थालतना गता नाम लगेगा तंका पैसा ने मतना नेरा बिचुंग ना लाइवलीहुड सपोर्ट करना नहीं हुआ कम्युनिटी फंड कैसा सपोर्ट हुआ एनआरएम ने गता यानो चुना बिचुंग ना स्टार्टअप फंड उन्हें आप चिंगा था स्टार्टअप फंड कहाँ छोल भी रंग ने आरो बंगली के पास बा छोल भी के पास दौल रंग ने तंका पैसा ने बिचुंग दक्षा निको मतना नहीं आरो कहाँ छा आसिया निको कुम्यात ना आरो मुखंग चिना नंबता निको राबना गता आदिता नियम रंको बा रामा रंको इंडिया ने सरकारी होना जेकोन सोनी कंगल छोड़ रहा ना ठंका पैसा मानना थारी गमन छोड़ रहा को अच्छू बाते आरो बंगबाते जखलना मानना गता थारिया निको तकहा
1: स्टार्टअप फंड आरो माय चूज़ से ना उन्हीं गमन उन्हीं से थलात मन पागल मु
0: स्टार्टअप परा वह ठंका जेकोन गताल एसएचई रहना बांगा बंगी जा ठंका रहा को अंगपांगा जिरकोडे वामंग या ग्रुप ना नांचुंग मतकपा बस्तु रंगको जेकाई रजिस्टर रंग बॉक्स रंग बा मीटिंग रंगको मतना खोरोस रंग ना जखलना गता मानगेन उनी जा मनुसा चुना बिशोंग ना रिवॉल्विंग फंड को रिलीज का
1: इतना मरुन या रिवॉल्विंग फंड अंगपारा माइको मुक्सोंस काचुम से
0: रिवॉल्विंग फंड अंगपारा जेकोन ग्रुप मेंबर रंग मंगमंगसन व ग्रुप अनिको श्रो ना मंगपा तंखारंग ना आरो वामंग तंखा रंगको श्रोए सुत पक्षा छुटपुए ग्रुप ने तंखा पैसा रंगको बा तंगद्वातना दक्षा कपा उमा रिवॉल्विंग फंड मतना नी जमनो चुना बिशोंग ना दलगपा गादानो जेको विलेज ऑर्गेनाइजेशन ने मना या विलेज ऑर्गेनाइजेशन ने लेवल हो चुना बिशोंग ना कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड कोबा ना दिवा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दे क्लस्टर लेवल फेडरेशन लेवल हो उनका पाऊंगा जिन सालों सेल्फ हेल्प ग्रुप रंग लाइवलीहुड ट्रेनिंग को मानगेन बांगो उन्हीं जा मानो गम्मे के छानी बाजिल्ला खानी पा बादंग चिवाला ने दक्कपा रंग को दक्कता गुता वामा सीएलएफ ओनी को तंखा रंग को शोना गुता मानगेन अंडिबा वामा स्कंग लुपादे सीआईएफ लोन को मानना माइक्रो क्रेडिट प्लान को सीएलएफ ओना सबमिट खाचिंगा गुता मानगेन आरो सीएलएफ ने मेंबर या को निग्र के नियम को थारिये वामा ना तंखा रंग को अंगेन
1: यह सेक्टर ने गताबा नसीमां वीआरएफ बनानिक ना लगेमना यह वीआरएफ तंगपारा मुझे
0: VRF ara uncho vulnerability reduction fund vulnerability reduction fund ko tuna village organization ni level lo release ka vulnerability reduction fund ara mayawa ya fund jeo sumu noko bulkri bat kapa noktam rang ya VRF ni gita bishon support ko manna NRM ni gita ya dakchakani rang ko tuna bolna ha mamu sorkari ni gita khangal gita bulkri kapa noktam rang na 지금 등탕 많지 않나 이 다급한 서포트 않고 나만 게 지금 VRF 니

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच श्री नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकालेखा और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया।

0: अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यान आकाशवाणी टोरा समय दाओ चीनी बहुत बजे वहाँ न सीमां दिल में रख बाहिं दिखो बरको को ना सोना मना है यो समय न बको न सीमां ना दाल साना रगा तम न तारी सोम पोम रंको समय न बक्सा सुसु अतंगेन साने चीनी बजे में चुकन बजे न सीमां राबुन बोरो आरो कुकुमारी बसुमतरी नी बोरो की टांगो को ना सोना मन गेन चोल जो न सीमां चिकने कोलाची बजे ओहन दिल्ली मतलब कपाब विविध पार्टी प्रोग्राम एसएमएस के बहाने विवेश के तारानी को अपना सोना मंगेन चिकने सत्पाम बजे विविध पार्टी चारों का सात बजे विविध पार्टी हिट सुपर हिट सात कोलाची बजे विविध पार्टी मन चाहिए गनी बजे साली निज कबर गनी ची वाउ जात हम निज कबर गनी कोलाची बजे विविध पार्टी प्रोग्राम गतम बजे हिंदी कबर गतम वाउ बजे इंग्लिश कबर को अपना मंगेन यान दाल साला थारी सोम फॉर्म रहूंगा दाल जो तो दाल तमी पाम को वेतन स्कना आता मेरे दोपहर जो वेतन ये लोग समय का नंगे दोपहर बजे शिलांग स्टेशन पर कपाट चुक रहा को खुला सोना मंगे दोपहर चिपा बजे निपुण दो मरक आरो उन्हीं दोलनी सोना थलाने की रंगो खुला सोना मंगे दो कला चिपा जियो एनपी प्रोग्राम को तनी समय जो सब ठीक संबंधी सेगमेंट आरो एसीएच मरक नी तारीख पा आजकल नहीं गंदंग चंदंग नहीं बिदंगो डॉक्यूमेंटरी फीचर थारी मुंगो ना सिमांग बाकनी के बाको कना सोना मंगेन जोल जो ना सिमांग आतंग की तरंगो कनांग ना मंगेन स्नी बजियो तो के हाउस प्रोग्राम को अतनी सोमायो कुमार सानो नीर को बागी तरंगो ना सिमांग कना सोना मंगेन स्नी कलची बजियो स्पॉन्सर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नी किसान वानी नी बाक कलची इसाक बाको ना सिमांग कना सोना मंगेन छठ बजे हिंदी खबर छठ पाँच बजे इंग्लिश खबर छठ कम बजे वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम छठ कोलाची बजे स्पोर्ट्स केन प्रोग्राम छठ सप्री पाँच बजे हिंदी खबर स्कूल बजे इंग्लिश खबर स्कूल जी पाँच बजे स्पोर्ट लाइव प्रोग्राम स्कूल कोलाची बजे विविध पार्टी प्रोग्राम छकम बजे हिंदी खबर छकम पाँच बजे इंग्लिश खबर बन खामे छकम छकम बजे नी छकम कोलाची बजे सीमा विविध पार्टी प्रोग्राम को खुना मन गेन यान दाल साना और दाल तमना तारी सोम प्रोग्राम रहा दाल दुख तुख सनी जमनो छिगनी छकम बजे हन सीमा बोरो की ट्रांको खुना मन गेन यान आकाशवाणी चुरा
2: मेट्रिक बेबल नकानियारा दुनुआ न्योंगजा यंग जंगी थांगानी आबाछियानी बाकुआ ना सेनिटरी नैपकिन्स बायोडिग्रेडेबल पैड टैम्पोन्स बोना के जखत थाना मत गबारंगखो बासे गेनचमोबा रोंग थाला थालानी को दे नंग थेलाया बेबल नकानियो जखलानी रंगो खोंथा ब्री बा डॉग प्राको सेंग जाना गत्ता बदल जोंबो आरो रक्तपा साबोन बा स्मिलतानी रंगनि फाल छिको सा जखस खाबो बेबल नकानियो जखल परंगखो बदल नस खां आरो जामन फांनां जाक्सु जोंबो मेट्रिक बेबल नकानि छि सालनि दकानि रंगो दोंद कतनाबे बेबल नकनि तंगो जखलानि रंगो आगछाय राबतबो खा दोंगपोंबो आरो छसों स्खारंगखो यानि बिदोंगो চাকিজন আগান চিনা দি দিব
3: বাপর মানে চি ডাক চাকাকপা আর দংতো উপা বিয়াপ কো সাকান চিনা ওয়াত না মানগেন তাহলে নি মেচিক বিওয়াল না কানি না রাসুং ছাগবঙ্গু আনচু ইয়া কো নালজো কে রংথালে আর রাসুং ছাই রাখিনা
2: ইয়া কো জন মানি নামগেনি না ন্যাশনাল হেলথ মিশন ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট অফ মেঘালয় ইয়াতে ইয়া
4: লেটস লিসেন টু সাম স্টোরিজ অফ ইনসুরেন্স
5: ইট ওয়াজ 5 মিনিটস পাস্ট 11 As usual, Mary Auntie had just returned after feeding biscuits to the society dogs. Shantara was walking the floor when suddenly Mary Auntie slipped on the wet tiles. Just like a muddy biscuit, she fell and fractured a bone. Looking at the hospital bill, she didn't panic. In fact, she smiled and said, Achha kiya, health insurance dear. Now the bill will be taken care of.
4: In tough times, everyone says the same thing. Achha kiya, insurance liya. Visit achhakiainsurancelia.com and enjoy.

0: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे, व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
1: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
0: आपका साइबर रक्षक।
2: यहाँ आकाशवाणी टोरा समय चिकनी बजे मेज यहाँ समय रबन बोरो और खुकुमानी बासुमतारी बोरो गीतांग खनाना मतगन।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों के महफिल कार्यक्रम का अगला गीत श्री रामचंद्र का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल, आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बहू रानी।

0: प्यारे।
1: तो हम हमारे दो सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि अगर आपको भी किसी पंछी की तरह उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। हमारे कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है लेकिन बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिले हैं। और हमारा दूसरा सवाल था कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं लेकिन क्या इंसान अपने मन में खींची हुई सीमाओं को कभी पार कर पाता है। सोचिए, एक गंभीर सवाल है और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ज्यादा नहीं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आपकी हर तरह से मुकम्मल परिपूर्ण इबारत पढ़कर मन उड़ान भरने की चाहत रखेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चंचल मन भी पंछी की तरह होता है, अभी भी धरती पर होता है और देखते ही देखते आसमान में उड़ जाता है। मन जब उड़ान भरता है तब जमीन की बंदिशों को पीछे छोड़कर कल्पना आजादी और नए क्षितिज की तलाश में खो जाता है। अंबर को छूने, बीता कल भुलाने और बादलों के संग आंख में चोली खेलने की चाहत में मन पूरी तरह बेफिक्र और आनंदित होता है। ही आनंद आज आपकी बातें और गीतों से मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी इबारत लिखी है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक परिपोषण, वंश संरक्षण, उत्तरदायित्व निर्वहन, प्राकृतिक सामंजस्य संग समुचित संतुलन ही प्रवास परिभ्रमण को प्रेरित करता है। चाहे प्राणी जगत हो या पशु पंछी जगत हो, अपनी नस्ल पहचान वंश को बचाए रखना ही प्राणी जगत का मूल उद्देश्य है। उन्हीं की उत्तरदायित्व में स्थानांतर होता है। इस प्रक्रिया में भी अपनी मूल कला, स्थान और परिवेश को दिल में जीवंत जागृत रखता है और कालांतर में उन्हें पुनः गृह वापसी को प्रेरित करता है। नई ऊर्जा उत्सर्जित करती विषय पर कार्यक्रम ही महोदया की पहचान है। अरे वाह, इस सफर का साक्षी बन हम सफर बन गर्वित होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी शुद्ध हिंदी में बात कही है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत और मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सुंदर है, इसका जो सार मैंने निकाला कि वो ये, सपने देखो और उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचो, लेकिन अपनी जमीन उसकी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि जिंदगी में उड़ान सिर्फ कामयाबी पाने का नाम नहीं, एक श्रोता लिखते हैं, बल्कि अपने टूटे हुए हौसलों को समेट कर दोबारा मुस्कुराने का नाम है। जब रास्ते अकेले हों, आंखें आंसुओं से भरी हों और दिल थक चुका हो, तब भी एक गहरी सांस लेकर खुद पर भरोसा करना ही सच्ची उड़ान है। बशीर बद्र का एक शेर है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था सेहरा। शब्दकार हसरत जयपुरी थी और तर्ज राम लाल की थी। हमारे छोटे लिखते हैं कि पिछली सर्दियों में अपनी छत पर कई वर्षों से दाना पानी बारहमास रखता हूँ। पिछली सर्दियों में एक फाख्ता के जोड़े ने अंडे दिए, पर उनका बनाया हुआ घोंसला बराबर स्थान नहीं बना था, जिससे उनके घोंसले के तिनके गिर जाया करते थे। फिर मैंने वो स्थान बराबर किया और उनका घोंसला ठीक किया, उस पर एक गर्म कपड़ा बिछाया और उस पर अंडे रख दिए। तब से अभी तक फाख्ते वहीं पर अंडे देते हैं और अभी भी दो अंडे रखे हुए हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काम किया, बहुत बड़ा काम किया आपने। आपने उनके घर को बनाया जो बार बार टूट जाता था। बहुत बड़ा काम है ये।

और अब हमारी उड़ान कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुकी है, जहां हम चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की बोल सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भाभी का ये गीत।

तो दोस्तों, आज इस उड़ान में आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रवासी पंछियों की जो लंबी यात्रा है, उनका संरक्षण और उनके जो प्राकृतिक आवास है, उन्हें बचाने का

प्रयास करना और दुनिया भर में जागरूकता फैलाना ये हम सभी का कर्तव्य है। और हाँ, अपने मन की रक्षा भी हमें करनी है, यानी मन की उड़ान को कभी कम नहीं होने देना है, इस उम्मीद के साथ कि हम इस उड़ान को जारी रखेंगे। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दी इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: जिसने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पर ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। ठीक रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई है। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने CJP की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
4: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।

0: समर्थन से ये कर रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
3: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
4: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
1: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में

0: ये पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
1: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
0: हाल ही में सम्पन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीत कर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहलें भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार मां दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। फिल्म पाकीज़ा, शुरुआत कर रहे हैं इसी गाने से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आखिरी दांव फिल्म का ये गाना। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म थी अमर प्रेम। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनके जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से

मुंबई का बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा है कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इश्यू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार भी बंद रहेंगे। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। श्री नवीन ने कहा कि भारत का युवा सांस्कृतिक लोकतंत्र से जुड़ा है, भारतीय संविधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है और यही कारण है कि उनकी इस तरह की भाषा को भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायु स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप भी अनिश्चित बना हुआ है। वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है तथा हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। सांसद महिमा कुमारी मेवार ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान पर तीखा पलटवार किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि सांसद मेवार ने पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में हो रहे मानवाधिकारों का उल्लंघन का भी मुद्दा उठाया। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी भारत तथा पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

याराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता खुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ से सतीश चौहान, शिवम और निर्मला चौहान, और पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल, इन्होंने फरमाइश भेजी है चकला बाजार सामना से। और ये फरमाइश आई है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान।

राम पाटिल, शरीफा, नेहा, संध्या, गोलू, तनिष्का, रावी, देवांश और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई है इंदौर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत। ये

लता मंगेशकर की आवाज में ये था आंखें फिल्म का गाना। रचना थी साहिर लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता कापसी रोड अकोला से संतोष राव वाकड़े, ज्योति ताई।

पवन कुमार और इनका पूरा परिवार बिलासपुर से बाघमारे परिवार, और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन की ओर से, हिबरखेड़ से वासुदेव वाघ, लक्ष्मीबाई वाघ, संजय, ज्योति, आनंदी और इनके परिजन, बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बरता, नीलम बरता, नीतन नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि सृष्टि।

और इनका पूरा परिवार शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइशाई गन्नूलाल रजक, KRS अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

सावन को आने दो उस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यशोदास की आवाज में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम तंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नवगढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। रविन्द्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर गदरे, राजेश गदरे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: बेमिसाल फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविन्द्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन, रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मत नगर से ये फरमाइश आई है, वाशीनाथ ये उलकर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है, जिला तरन तारण पंजाब से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर तेजश्री कामले। अब अपने रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक प्लास्टिक की घास। आज आप सुनेंगे इस नाटक का पहला भाग। निर्देशक है दीना नाथ।

मैं दिल्ली 17 जून। मौसम बिल्कुल नॉर्मल यानी बेहद गर्म और खुश्क। सूरज अपने सही वक्त पर यानी 5:23 पर तुलू हुआ और इस वक्त यानी सुबह के 8:59 पर पूरे आबोताब से रोशन है। लोधी रोड के सरकारी क्वार्टर F2 15/614 के बाहर श्री HP शर्मा के नाम की छोटी सी नेम प्लेट को मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा साफ कर रही हैं। बाहर कमरे में 1930 के मॉडल का क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक टिक टिक टिक टिक चल रहा है और जैसे ही क्लॉक की बड़ी सुई 12 के डिजिट तक पहुंचती है क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक 9 बजने का ऐलान करता है और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। नहीं, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे

0: पढ़े पढ़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 बजे उठते रहे, स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं, पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
1: दफ्तर में ऊँघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
0: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बाहर के कमरे की तरफ पढ़ते हैं। एन उसी वक्त में से शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती है, जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकालकर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है, क्लॉक 9:15 बजने का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
1: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सेफ्टी सेज।
0: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं, यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से पहले या ऐन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है,
1: सिर्फ 3 किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों की खुशामदी है, ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेरा फेरियां करते हैं।
0: चुनाचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री एच पी

0: कौन घुसा है अभी घर में?
1: घुसा?
0: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है? ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे?
1: हो किसे कोस रहे हैं?
0: मैं पूछता हूँ ये कैसा कर रहा है?
1: ओ, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी, उषा तो कभी की आई हुई है।
0: बुलाओ उसे।
1: अरे इधर क्या आएगी बेचारी, घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है।
2: ओह हे भगवान, मेरा नहीं तो इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चे को ही कुछ ख्याल किया होता।
0: विनय लौटा है कॉलेज से?
1: हाँ, वो भी बहुत परेशान था, अपने किसी दोस्त को मिलने गया था, आता ही होगा।
0: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
1: आप सूरज ढलने की बात करते हो, हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है।
2: हौसला रखो लावंती, कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा।
0: विनय।
3: जी पिताजी।
0: कॉलेज से लौट कर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए।
3: इफ यू डोंट माइंड पिता, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
0: कैसा सवाल?
3: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती? आपकी ट्रांसफर होने वाली है, इसकी खबर तक न मिली आपको?
0: खबर आज ही आई है।
3: आज ऑर्डर आए हैं, आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी।
0: तुम्हारा मतलब क्या है?
3: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे।
0: ऑर्डर? ऑर्डर अब ऊपर से आते हैं, ये तो मेरे हाथ की बात है।
3: पिताजी आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर का क्या बनेगा।
0: तो ट्रांसफर तो मैं खुद करवा रहा हूँ।
3: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप, और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी, बंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती। अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगे हुई है? सब कहेंगे आगे के पावर खाने में जा रहे हैं।
0: तो क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का?
3: डोंट माइंड पिताजी, एक बात मैं साफ बता देता हूँ, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता।
0: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते?
3: कैसे जा सकता हूँ, यहाँ मेरा करियर है, एक अपना सोशल सर्कल है।
0: तुम्हारा सोशल सर्कल?
3: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में टोरकी नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप रुक जाइए, मैं यहाँ हॉस्टल में रह लूंगा।
0: क्या? तो यहाँ हॉस्टल में रह लेगा? और खर्चा कौन देगा?
3: ऑफकोर्स आपको देना होगा।
0: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूँ?
3: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
0: मेरे इस घरबार के साथ इसके साथ नहीं रहोगे?
3: मैं घर के साथ चिपका रहूं या अपना फ्यूचर देखूं? आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते, आगे चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल वो आपको वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे, वहां से गाजियाबाद कर देंगे, वहां से धनबाद, और धनबाद से फिरोजाबाद। माल गाड़ी की तरह आपको यहां से वहां, वहां से यहां शंटिंग करते फिरेंगे। हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहां बर्बाद करते रहेंगे पिताजी?
0: मेरे साथ अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है।
2: हे भगवान, मैं क्या सुन रहा हूं? मेरी औलाद मुझे इस तरह,
0: मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जा, दूर हो जा।
1: विनय, अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए।
3: नहीं अम्मा, मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं अम्मा, मैं क्या बताऊं? मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
0: निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से, जहाँ तुझे रहना रह ले। बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जा रह सकता है?
1: क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं? जिसे बाप का घर कह रहे हो वो कितने दिन और हमारा है? आए राम, किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठाए सारा घर बार उजड़ जाएगा।
3: आई एम सॉरी पिताजी, ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं ना जाने क्या क्या कह गया, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
2: तुम लोग क्या समझते बेटे, मैं क्या कम परेशान हूं? पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूं और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूं।
3: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
2: हाँ, कर रहा हूं, कर रहा हूं। कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
4: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
5: भाई साहब, आजी भाई साहब, जी जी, चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, एक कैश जमा करवाना है।
4: लंच के बाद आना।
5: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है?
4: तो फिर सुबह जल्दी आना था।
5: लेकिन जनाब वक्त तो अभी भी है।
4: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
6: अरे ललित बाबू, तो 11 बज गए, चलो भाई बड्डे बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
4: चलो भाई।
5: अरे भाई साहब, एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा कराना बहुत जरूरी था।
4: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की

0: आपके सीने में इंसान का दिल है पत्थर?
1: ओए चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती
0: है। चलो चलो चलो,
2: आओ आओ ललित बाबू, आओ इधर आओ, आओ भाई आओ।
0: नमस्कार बड़े बाबू जी। अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
3: नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है।
2: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
0: फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बहू की बर्दाश्त का जवाब नहीं। सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
2: कुछ न कुछ एक्शन तो लिया ही जाना चाहिए। रामलाल जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया। यही चार पाँच, और चार पाँच को लेनी पड़ेगी। और पैसे
3: ये ले, मैं देता
0: हूँ। ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता बड़े बाबू,
3: ऐसा नहीं हो सकता। एक ही बात है भैया, एक ही बात है, एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया? चलो चलो, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
0: ले ले,
3: ये ले 10 करोड़, अल्लाह पक्के ले आ जा।
2: मेरी राय में तो बड़े बाबू सबसे पहले आपको करमाकर साहब से मिल लेना चाहिए। क्यों भाई?
3: मगर वो क्या कर सकता है?
0: बड़े बाबू जी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों भाइयों?
3: सही बात,
0: सही है।
3: अच्छा तो फिर मैं करमाकर साहब से ही मिल लेता हूँ, और क्या।
2: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है करमाकर साहब के लिए।
3: हाँ सो तो है,
0: बस एक नोट लिख दो तो रुक गई ट्रांसफर।
2: क्यों भाई?
3: बिल्कुल
2: सही बात,
3: बिल्कुल सही। बिल्कुल
0: मिल लीजिए,
3: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
2: बिल्कुल ही, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत? अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले तो ही कोई एक्सक्यूज सोच लेगा, बस सीधा जा पहुंचे उसके पास। क्यों भाई?
3: बिल्कुल ठीक बात है। तो ठीक है, मैं आज ही करमाकर साहब से मिल लेता हूँ।
4: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना करमाकर साहब के पास।
5: मे आई कम इन सर?
3: आओ मिस्टर शर्मा, कम इन कम इन, आओ बैठो। कैसे हैं
6: सर? आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
3: हाँ हाँ बोलो
6: सर। वो बात ये थी कि
7: आपने तो इतना कुछ किया करमाकर साहब,
3: आपने तो इतना कुछ किया करमाकर साहब के लिए।
6: सर आपको याद होगा, जब आप दिल्ली आए थे तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने में ही आया था।
3: हाँ याद है,
6: जब आपको सरकारी क्वार्टर में मिला था तो गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था सर।
3: याद है बरोबर,
6: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाईस स्किल पर आपके घर पहुंचाता।

0: नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। ऐसा अक्सर होता है जब फिल्मी पर्दे पर हम किसी विशेष अभिनेता या अभिनेत्री को किसी किरदार में ढलते देखते हैं तो हमारे मुंह से बरबस ही निकलता है कि ये किरदार इनके अलावा तो कोई निभा ही नहीं सकता था। लेकिन कोई किरदार किसी अभिनेता अभिनेत्री पर कैसा लगेगा या कहे कि किसी खास किरदार में कौन सा एक्टर ढल सकता है, ये पहचानना भी एक कला है। और उस कला में माहिर होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या होता है इनका काम और किस तरह कागज पर लिखे किरदारों के लिए एक्ट्रेस का चुनाव ये करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें आज मिलने वाला है, क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी। तो गौतम जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। यहाँ पर मेरा सौभाग्य है, यहाँ बुलाया आप लोग ने मुझे।
1: तो गौतम जी, इससे पहले कि आपके काम के बारे में हम बात करें, आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे पले बढ़े और क्या आप मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते थे और किस तरह से आना हुआ?
2: मैं मुंबई का ही हूँ, यहाँ की पैदाइश है
1: जी।
2: और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, तो उनका खुद का एक नर्सिंग होम भी था और वो हमेशा चाहते थे कि मैं मेडिसिन करूं। और मेरी बहन ने ऑलरेडी उन्हें कह दिया था कि उसे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है
1: जी।
2: तो क्योंकि मेरे पास 18 की उम्र में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या लाइफ में, तो मैंने भी मेडिसिन कर लिया कैसे तैसे स्ट्रगल के साथ। और मेडिसिन करते करते मुझे एक्चुअली बीच में एक रीजन से मुझे मेरे आंटी के घर जाना पड़ा बलगाम में। वहाँ रोजा फिल्म लगी थी, तमिल में लगी थी मणिरत्नम सर की, तो वो मैंने देखी। और उसके पहले क्या था, मैं फिल्में बहुत देखता था, मतलब छुट्टियों में दिन में 3 फिल्में देखता था वीडियो कैसेट पे, VCR पे। पर जब रोजा देखी तो मुझे एक फिल्म देखने वाले से इंटरेस्ट आया कि अब मुझे ना फिल्म में इन्वॉल्व होना है। वो फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, रहमान के म्यूजिक से और संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी और मणि सर का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। पहली बार एक ऐसे लेवल की फिल्म देखी जो मुझे लगा हाँ ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है, और ऐसी फिल्म में पार्ट होना ऐसी फिल्म का बहुत बड़ी बात होगी करके ये मेरे मन में बैठ गया। और फिर मैं अगले दिन फिर अकेले वो फिल्म देखने गया और फिर वो और भी फीलिंग स्ट्रांग हो गई। तो तब मैं आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS में था और वहां से आई थिंक वो सीड हो गई थी। और वो फिर मैंने कैसे तैसे 3 साल निकाले और इंटर्नशिप की, फिर भी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, लेकिन नहीं तो अस्पताल में तो काम करके देख। फिर मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में भी मैं जूनियर रेसिडेंट था।
1: अच्छा।
2: हाँ, वो भी किया। और मैं सुबह निकलता था बस में, परेल जाना होता था MGM हॉस्पिटल में, और मैं सोचता था कि मैं घर कब पहुंचूंगा और फिर चलता रहा 1.5 साल। बट एक पॉइंट के बाद मैंने बोला मुझे नहीं करना है, तो मैंने आके मेरे मम्मी पापा को कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में, मुझे फिल्म्स में कुछ करना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, बट आई वॉन्ट टू क्विट मेडिसिन। तो तब तक आई थिंक दे हैड रियलाइज्ड कि हाँ इसने 1.5 साल अपने दिए, एक अस्पताल में काम भी किया और फिर भी खुश नहीं है, तो फिर रहने दो।
1: तो गौतम जी, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा तो एक्टर बनने आते हैं, उसके बाद हो सकता है कोई गीतकार बनना चाहता हो, कोई राइटर बनना चाहता हो, कोई डायरेक्टर बनना चाहता हो, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ये बनने का ख्याल कैसे आया आप?
2: मेरी कोशिश रही थी कि मैं असिस्ट करूं और इवेंचुअली डायरेक्ट करूं, तो मेरा रास्ता वैसे शुरू हुआ। मैंने पहले एड फिल्म्स में असिस्ट किया
1: जी,
2: और फिर मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिल्म्स में असिस्ट करना है। तब आपके फेवरेट कोई डायरेक्टर्स होते हैं
1: जी,
2: वो शॉर्टलिस्ट करके उनको चेज करने लगा मैं, बट कहीं बात नहीं बनी क्योंकि मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में।
1: हाँ।
2: कोई पहचान नहीं थी। मुझे पता चला कि जेवियर्स इंस्टीट्यूट का XIC का कोर्स है, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का पार्ट टाइम कोर्स है कुछ, तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया और उसमें पास हुआ। और फिर मेरा वो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का कोर्स था, आई थिंक 9-10 महीने का कोर्स था। शाम को होते थे क्लासेस और वीकेंड को फुल डे होता था, तो VT में जेवियर्स में जाता था और वहाँ अच्छा एक ग्रुप बन गया। हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हुए।

0: से मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला। मैं और मेरे ग्रुप को, हम 4 जन थे, तो हमने गुजरात अर्थक्वेक में भी कुछ फिल्में बनाई थी। वहां से मेरी जर्नी, वहाँ फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा भी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए। एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की, तो फिर मैंने 1-1.5 साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया। बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमाना शुरू किया, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब। और ये 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे। हाँ,
1: अच्छा
0: तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में। फिर मैंने बोला कि अच्छा, 1.5 साल मैंने काम किया उधर, और फिर मैंने बोला हाँ भाई, फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है। तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, भुवन निहलानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा हाँ, रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है। और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी, और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। और तब अनुराग

0: इंसिस्ट करना चाहिए करके, तो उनके पीछे लगा रहा मैं। और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो। तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के बोले कि ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में।
1: तो जैसे आप उनके पीछे लगे हैं, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगने, मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे आप
0: मतलब
1: उनके पास
0: मेरा
1: गए?
0: लक तब था, ये तो 2001-02 की बात है, तब डीवीडी हुआ करती थी, तो एक डीवीडी लाइब्रेरी थी बंबई के एक इलाका है मांड्रा, और वहाँ का जो

0: असिस्ट करना है उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहाँ और वो आए और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया। और वहाँ से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ जो असिस्ट करना चाहता हूँ, तो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर हो के तुम असिस्ट करना चाहते हो।
1: जी
0: बोला हाँ, मैंने छोड़ दिया मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके। वहाँ से शुरुआत हुई।
1: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर जाना, ऐसा आपका इंटरेस्ट आ गया
0: हाँ।
1: और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले, तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से
0: नहीं
1: शुरू हुआ या कैसे शुरू हुआ असिस्टेंट का?
0: मतलब जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता,
1: जी
0: जो बड़े डायरेक्टर है, रेड वन, रेड टू, आमिर, नो वन के जैसे
1: जी
0: करके, वो एसोसिएट थे अनुराग के। और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख तू कास्टिंग संभालेगा। तो पहले कैसा होता था कि 4 या 5 6 AD होते थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा। ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है,
1: जी
0: जो एकदम स्पेसिफिक है, वो तब नहीं था कि 4 5 AD सब डिपार्टमेंट संभाल लो। तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम मैं कंटिन्यूटी लिखता था
1: जी
0: और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था, बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही। तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूँ। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है।
1: जी
0: तब मैंने वही हॉलीवुड की फिल्में देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है। तब मुझे समझा अच्छा देर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स। सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने को। तो अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे, तो एक दो जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा
0: तो ऐसे मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था। तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई।
1: जी, तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे?
0: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली एक दो बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भाई अब शुरू कर लो काम।
1: जी
0: तो बड़े एक दो जो भी कलाकार हैं वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपी

0: हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है, जिनके डायलॉग्स है, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है, जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर, NSD, FTII या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं। तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है। तो ऐसे हम 8-10 शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनको वो एक सीन भेजते हैं, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4-5 के बीच में आके ये सीन करना है। फिर वो एक्टर आता है, परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8-10 जन जो हमने ऑडिशन किए, उसमें से हमें जो बेस्ट 3-4 लगते हैं, वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो। उनको अगर नहीं पसंद आए कोई भी, तो और लोगों को ऑडिशन करते हैं, वरना वो 3-4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि कौन आपको कौन लगता है उसके बाद में फिट बैठेगा, देन आप आगे लेके जाते हैं। गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी
1: सुनिए
0: बहुत पसंद है।
1: जी, सुन लेते।

0: कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब आपने शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: ओवरली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकेंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं। कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया है।
1: हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ, हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई, तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा, वो लॉक हो गया।
0: तो ऐसे मुश्किल में
1: ऐसे भी कभी कभी होता है। कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर की वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द 4 कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये 4 जन एक फैमिली के लगने चाहिए। तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
0: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट, आपने जिनका ऑडिशन लिया है भेजा, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा ना माने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
1: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में, तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहे विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ऑडिशन करे, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजीशन। एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
0: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं?
1: ऐसे भी थे एक्टर, एक एक्टर है 2-4 साल पहले, मैंने उसके साथ 3-4 बार काम किया, उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई मैंने फिल्म में असिस्ट किया और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो, कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए। तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को, और आपका टाइम आएगा। ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
0: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए।
1: हाँ,
0: अगर देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
1: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट, अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी, और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी, और जैसा पार्ट था वो

0: आज बहुत कॉमन दिखता है, बट 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए। तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना है करके। बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्ढा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड, फाइनली वी वेंट विद कल्कि।
1: और बिल्कुल सही लगती हो कैरेक्टर,
0: हाँ
1: जैसा
0: हाँ
1: कह रहे थे ऐसा
0: हाँ
1: लगता है वो ही उस किरदार को बहुत अच्छी तरह
0: हाँ
1: से निभा सकती है।
0: हाँ
1: तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी
0: बिल्कुल।
1: सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी, आई थिंक।
1: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।

0: कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा, और उसने मना कर दिया मान लीजिए उस एक्टर ने, फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम.
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है.
0: जी
1: नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के.
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया है जो शेल्व हो गया था. हमने ऑलमोस्ट 4 4.5 मंथ्स कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की, जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए. वो मैं अनमोल अहूजा जो कास्टिंग दे के चलाते हैं, हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो. लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहाँ. आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया.
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जैसी काम है, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ 1 महीना ही था, 1 महीना या 1.25 महीना था. और बड़ा कास्ट था, 50 70 स्पीकिंग पार्ट्स थे. बट वो था कि हम बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3 4 हफ्ते में टेस्ट करके, आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे. काफी मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो.
0: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता रहे
1: हाँ
0: हो.
1: और
0: आपको
1: टाइम बहुत कम था.
0: जी, अगर सीक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये अगर मुझे सही जानकारी है तो भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है.
1: मैंने सीजन 2 की थी, सीजन 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था.
0: जी, पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
1: नहीं, कुछ फर्क नहीं होता है. ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं. फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो.
0: जी
1: तो वहां अलग एक्टर्स होते हैं. जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपरा वाले शोज किए हैं, तो उनको फिल्म में अडाप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम.

0: सकते हैं, कर पाते हो इवेंचुअली, बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है, बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है।
1: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं, उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
0: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: और कुछ कभी किया है वो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
0: नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है।
1: और आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो, तो कभी ऐसा लगता है कि ये इस रोल
0: मैं
1: में तो
0: कोशिश
1: फिट बैठेगा?
0: करता हूँ कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूँ। क्या है, क्योंकि दूसरा एक्टर्स को फिर बुरा लगता है, एक्टर्स को लगता है कि अच्छा ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है। तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बिगनिंग में एक दो बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो, छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो, बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने।
1: जी
0: तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरी टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा, अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया।
1: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में, तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी
0: हाँ,
1: और
0: और
1: फिर
0: फिर
1: बाहर
0: एज
1: जाना
0: एन
1: पड़ेगा,
0: एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं मेरी टीम में।
1: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि
0: हाँ,
1: सबके लिए
0: ताकि
1: चीजें।
0: जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।
1: तो गौतम जी, हम आपकी पसंद का एक गीत सुनते चले और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं।

0: गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं, जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है उनकी कास्टिंग पहले होती है, फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं जिनके तीन चार सीन हो, साइड बाय साइड हो जाते हैं।

0: शुरू करते हैं, फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं
1: जी
0: तब टर्शियरी होते हैं एक लाइन वाले,
1: हाँ
0: वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है, तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है, तो 4-5 दिन जाते हैं सारे टर्शियरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शियरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इनोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए, और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, क्राउड फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है,
1: हाँ
0: वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग एरिया के ऊपर डिपेंड होंगे कि कहाँ है, डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है वो लेकर आता है, उन जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाते हैं वो।
1: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनकी उस
0: हाँ
1: तरह के लोग दिखने वाले एकदम कोई बहुत ज्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह
0: नहीं
1: से वो आप चुनाव कर लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है कैसी कद काठी ये तो देखते ही हैं, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज करते हैं?
0: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए, बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, कि अगर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है, फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता, फिर अगर एक स्ट्रॉन्गर एक्टर ऑप्शन है तो यूजुअली डायरेक्टर विल गो विथ हिम और हर।
1: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से
0: हाँ,
1: वो,
0: वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।
1: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं तो कहते हैं कि जब इस मीडियम में कोई काम करने लगता है तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है।
0: बट कभी कभी हो जाता है, जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं तो वो नोटिस में आता है, जो भी ज्यादा फिल्में देखते हैं, आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को, तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का।
1: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान जाते हैं
0: हाँ,
1: फिर
0: जान जाते
1: कौन
0: हो कि
1: सा
0: अरे
1: एक्टर है।
0: यहाँ ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया।
1: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
0: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर को असिस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है जो मुझे लगता है कि मेरे में थी, इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था, बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में और आप बोलते हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग बट देर इज एन इंस्टिंक्ट।
1: मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें
0: हाँ
1: ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा और उस तरह
0: हाँ
1: से आपको एक खाना
0: हाँ
1: हुआ।
0: वो होता ही है, मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके,
1: जी
0: और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है।
1: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से हम मिल लेते हैं
0: हाँ, जब
1: मिले।
0: भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना, कभी सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है,
1: जी
0: सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे, या बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह रहने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, इसलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूँ, आपके होम टाउन में, आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहां ज्वाइन करो एक्टिंग, ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो, बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, लाइक एनएसडी जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट या एफटीआई जैसा या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए। क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहा है और कौन जेनुइन है करके। अगर है जेनुइन लोग भी है बट फ्रॉड्स भी बहुत है, वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइन होगा और आपको कुछ बता देंगे, सीन दे देंगे, बाद मतलब शूट का टाइम होगा, वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ जो एक्टर बनना चाहते हैं या बनना चाहती है कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द इंडस्ट्री देन।
1: हाँ, और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग के, तो वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
0: हाँ, और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे, वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है मुंबई में। फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
1: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
0: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए, और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे, और बस मैं था और एक वो एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन, एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
1: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म, ऐसी ऐसे कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म।
0: हाँ, ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म की वजह से हूँ।
1: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है तो उस फिल्म से कोई गाना सुन ले।
0: अरे बंदी है ना, इंडियन ओशन का गाना।
1: बहुत ही प्यारा गाना।

0: आप लोगों के पास ये पूरा हैकर्स का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है, किस
1: देखिए
0: तरह से
1: जैसे
0: आप?
1: आप और काम करते जाते हैं आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ। कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म्स देखूँ, इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें, मिलकर प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें, 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं भी हो वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए, जिसके लिए भी। यही कहता हूँ कि एक्टर्स को कि अपने आप को विजिबल रखो।
0: और अपने आप परफॉर्म करते रहे, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए।
1: कोशिश जारी रखिए, अगर आप अच्छे एक्टर हो आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
0: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं, तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
1: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोअर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, टीआरपीज या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं तो वो शायद उन्हें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें, उन्हें तो फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ, और वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहा है। मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट मेजोरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते हैं उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा। तो वो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वॉर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
0: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुनेंगे आपकी पसंद से?
1: ना वो डेली 6 का रहमान का रहना तू
0: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपके।

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ। उसके पहले 90 सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इम्पोर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर का, MSG के एक्टर्स ढूंढ लो, हमें रियलिज्म चाहिए,
0: जी
1: जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है चाहिए। तो वो 2001 दो तीन से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं। तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
0: मतलब
1: तो
0: अब स्टूडियो में वो नहीं आते हैं, वो खुद करते
1: हाँ,
0: हैं।
1: वो पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर बम्बई के बाहर हुआ एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा। बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट। तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोस है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कॉन्टेक्ट भी है। इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं। कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए।
0: अपने रील्स या ऐसे अपने काम
1: हाँ,
0: आगे
1: रील्स,
0: बढ़ाने
1: यू नो,
0: हैं
1: कुछ
0: जी।
1: भी जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता। जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए। कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कांटेक्ट करेगा।
0: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा, और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते हैं, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
1: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है। चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा। घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे, जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली। तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में। बट मैंने ऐसे भी देखा कोई दो तीन ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है कि वो एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे,
0: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं और
1: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में, बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको चार दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर, ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है।
0: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उसके आपसे।
1: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
0: और जैसे कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोले कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी इस तरह से भूल जाएगा कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
1: देखो, सोशल मीडिया पे हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है। अगर वो इज वेरी और यू और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए। वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है।
0: बट जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
1: उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आप जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है, सब क्रेडिट्स देखते हैं। अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है उसे मैसेज भेजिए देखिए रीच आउट करिए। अगर आप बम्बई में है तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम रामनगर वर्सोवा में हो रहा है
0: जी।
1: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स, उनके ऑफिसेज में जाइए दरवाजा खटखटाइए इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनके डेटाबेस में आ जाते हैं,
0: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं,
1: चूज करके बुला सकते हैं फॉरेन ऑडिशन।
0: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी?
1: आई थिंक वो ये एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कैपेबिलिटी। अगर आपको पता हो कि एक अच्छा एक्टर है तो उसको हम टेस्ट करते हैं बेसिकली। हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स है, इवन दो दोनों दिल्ली की है बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों,
0: अपने परिवार को पकड़ने अच्छी तरह
1: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
0: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो उसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
1: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी। आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजंस को कास्ट करे बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग और फंडिंग इज वेरी डिफरेंट, तो आई थिंक दे वर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजंस, हेंस दिस वाज डन।
0: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशकों की हमें ये नहीं चाहिए?
1: एक बार हुआ था एक फिल्म में, मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है, मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था, उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते हैं इसको कास्ट, लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था वो भी कॉलेज में, और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमराज होते थे लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई है कंपेरेटिवली, उतना साइज नहीं होता लाइट्स, तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन, फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया उसको ये किया और वो उसने किया बट नॉट टू हिज एबिलिटी, फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्म की बाद में, लेकिन ये हुआ था। उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
0: जी।
1: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी, ऐसे रॉक लो मत या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं, बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया वो लोग छा गए कैमरा पे
0: कोई बिना ट्रेनिंग के, वो
1: दो बच्चे थे स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहाँ के दो बच्चे कास्ट किए थे, उसमें एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता
0: तो वो आप कह सकते गॉड गिफ्टेड है।
1: हाँ वो गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो।
0: आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?

0: ग्रोथ नहीं पड़ती है, बट जहाँ जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता
1: बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया।
0: हूँ। हाँ, मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है। अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहले दो स्क्रिप्ट्स बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए।
1: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उसे
0: नहीं,
1: बाद में?
0: पहले पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा, फिर कास्टिंग पे आऊंगा।
1: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने
0: वो
1: एक
0: मैंने
1: डायरेक्शन
0: अब
1: तो आपने कहा।
0: हाँ वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी, तो
1: अच्छा,
0: घनचक्कर थी 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई। फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर वो से कैसे कैसे निकल आया मैं, और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की। मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा।
1: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे आप?
0: जिंदगी कैसी है बहेली।
1: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पे ये गाना।

0: हमसे की हैं। आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आने चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
1: वही जो मैंने एक्टर्स के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िए फिल्मों की किताब, पढ़िए फिल्म मेकिंग की किताब, पढ़िए एक्टिंग की किताब, पढ़िए कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हॉलीवुड

0: जगह बॉम्बे आए, बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, FTI एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए। दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए
0: हाँ,
1: अपने आप।
0: अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी जो हमें पता भी नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
0: जी बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद। बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: शोरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
3: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
2: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
3: वो हम है तो इंसान ही ना, पर लोग उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, तो फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
2: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहत 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर

देश की सुनीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ आपके दोस्त नेहा शर्मा। दिल की कलम से जब निकलते हैं चाहतों के किस्से, तो वो बातें छपती हैं दिल की गहराइयों में। अरमानों के बादल रचते हैं नित नई इबारत प्रेम की। मन डूबने लगता है एहसासों की गहराइयों में, उमड़ते हैं जज्बातों के सैलाब, और नजर आता है यादों में बस वही चेहरा।

प्रेम की मासूम चाहते में क्या कुछ किए जाते हैं हम, लिखते हैं तेरा नाम कभी कभी छुपाते हैं हम। दिल की बातों को कह पाना कहां आसान रहा, लिखने लगूं तो शब्द भी पड़ते हैं कम। जो कहना था तुमसे मिलकर हमें, वो जज्बात कागज में कहां समाएंगे, कभी मिलो जो ख्वाबों में तुम।

मिली जो प्यार की पहली पाती, हुए मेरे पैर हवा अब, कभी उड़ती हूँ यहाँ कभी उड़ती हूँ वहां, कदमों ने मेरी छू लिया जैसे आसमां। न होश खुद का न खबर जमाने की, कहने लगी सखियां मेरी हुई तो इस दीवाने की, इश्क मोहब्बत प्रेम की पिंगी खेलने लगी है दिल से, अब राज ये छुपाना मुश्किल हुआ है इस दिल से।

आप सुन रहे हैं क्या आगे, भेज तो दिया दिल का पैगाम उन्हें, न जाने क्या लिखा इस दिली नादान ने, अब घबराते हैं अरमान, डरती है खुदा जान उन्हें, प्रेम में नाराजगी न मिले कहीं अंजाम हमें, ये प्रेम की पाती लिखना कहाँ आसान रहा, जब तक न मिले जवाब उनका दिल रहे परेशान।

चाहे खत तो देंगे जवाब भी हम, कैसे कह दें किसी अनजान से अपने दिल की ये बात हम। कहनी तो थी उनसे लाखों बातें दिल की, मगर किसी और से कहते वो बातें झुकती है शर्म से नजर। लिखा था मेरे सांवरिया ने, जानते हैं वो मेरे दिल की हर बात। लिखा सलाम छुपाए हैं उसमें ही दिल के सारे जज्बात।

लिखते दिया था सलाम खत में छुपाकर दिल के जज्बात, वो क्या समझेंगे मेरे विरह की रात, क्या जान जाएंगे मेरी उलझी लटों की उलझने, मिलेंगी आंखों के कोर में छुपी उनके इंतजार की वो रात, न जाने कब आएंगे साजन इस गली, उनके बिना न दिन भले लगे न लगी भली रात।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। तराने नए पुराने प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम तराने नए पुराने में। मैं हूँ विधि प्रवीण जैन। नमस्कार।

हम सुन रहे थे ये गीत परिणीता फिल्म से, जिसे गाया सुनिधि चौहान ने। स्वानंद किरकिरे इसके गीतकार हैं और शांतनु मोशा ने इसे संगीत दिया है।

0: सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में यह गीत, जिसके गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं अनु मलिक और फिल्म का नाम है जाने मन। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: वो हम है तो इंसान ही ना, पर वो किस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, तो फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहत नामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं खूबसूरत फिल्म से यह गीत। आशा भोसले अशोक कुमार की आवाज है, गुलजार के हैं बोल और संगीत है आर डी वर्मन का।

ไม่หายใจใจ

आज कार्यक्रम तराने नए पुराने में हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री रेखा को भी, और चलिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म उमराव जान से। आशा भोसले की आवाज है, गीतकार हैं शहरयार और संगीतकार हैं खयाम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने। आज है अभिनेत्री रेखा का जन्म दिवस, तो आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माई गई फिल्म सिलसिला का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत दिया है श्रीहरि ने।

0: 5000 रुपए लगाइए और 8000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या फिर स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक। पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
3: और हमेशा हमारी फिक्र करना। वैसे उनकी जमा पूंजी बैंक में भी है
1: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
3: और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जा, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
1: RBI कहता है
3: जानता बने सपोर्ट करिए।
4: देखो जी 100 ग्राम पेड़ी देना 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
5: अरे क्यों?
4: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
5: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
4: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
5: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
4: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस से ही मैक्सिमम फायदे से ही।
6: Let's listen to some stories of insurance.
7: That day, Mr. Hunter returned home from his office with Mr. Dugal to find the door wide open. Everything was in disarray. TV, fridge, jewelry, all gone. A lifetime of savings wiped out in one night. Placing a hand on Mr. Dugal's shoulder, Mr. Hunter said, "You gave the right advice, Dugalji. Achha kiya. Home insurance liya. The losses from the theft, now insurance will cover it."
6: In tough times, everyone says the same thing. Achha kiya, insurance liya. Visit achhakiyainsurancelia.com, an insurance awareness initiative by the General Insurance Council of India.
8: Achha kiya, insurance liya.
9: To shuru kare invest.

0: सिरी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सिरी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सिरी साथी ऐप।
1: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या फिर स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

सीमा आज क्रांगनी गंदंग छिंदंग रांगनी गमन थारी गमन प्रोग्राम नी गनेक पा बाको खनासोन मना हा या को सेगपा जोसेफ ची सांगमा आरो थारी गपा ए सी एच मारांगवा दोना सीमांगना फ्लायंस दी मोमनी रंगपा अतोंगी टांगो का मातांग स्काइंगा

she said a name. Hello?

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: नसी मांग साजन की बाहों में फिल्म की कोखना हाँ तो मुगपन की खुना सिमरों तस कहेंगा वन दामिनी फिल्म नी जब से तुमको देखा

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
4: नमस्कार।
3: अमित कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोता किसान भाई बहनों के लिए मौसम के अनुकूल फसलों की बुआई कटाई उन्नत किस्में और नई नई तकनीकी के साथ साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं को शामिल करते हैं। वहीं कृषि वैज्ञानिकों के शोध अनुसंधान के जरिए कृषि की नई नई जानकारियां भी लेकर आते हैं अपने कार्यक्रम में।
5: बिल्कुल प्रतिभा, आपने सही कहा भाई। आज भी हम कार्यक्रम में अपने किसान मित्रों से बातचीत करेंगे संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना पर
3: और साथ ही हम एक खास बातचीत सुनवाएंगे सरसों की उन्नत किस्में और बिजाई पर। और अमित, इसके साथ साथ हम अपने किसान भाइयों का मनोरंजन भी करवाते हैं तो एक सुंदर सी भेंट भी सुनवाएंगे माता रानी की।
5: बिल्कुल प्रतिमा, और कार्यक्रम किसान वाणी बिना मौसम और बिना कृषि सलाह के तो पूरा होता ही नहीं है, तो वो भी हमने कार्यक्रम में शामिल की है अपने सभी किसान भाई बहनों के लिए।
3: तो अमित, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के साथ
5: जी।
3: अब देखिए, हमारी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, हमारे किसान भाइयों के हित को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं और मिशन लेकर आते हैं जिससे कि किसान भाई बहनों को भरपूर लाभ मिले और कई गुना उत्पादन के साथ साथ उन्हें आय का अर्जन भी हो सके।
5: बिल्कुल प्रतिमा, आपने सही कहा, क्योंकि किसान भाई बहन जब कोई भी कृषि कार्य करते हैं तो समय समय पर धन की आवश्यकता होती है, और यदि ऐसे में हमारे किसान भाइयों के पास धन ना हो तो हम कहीं ना कहीं साहूकारों की ओर जाते हैं, कहीं शिकार हो जाते हैं ऐसे ऋण का कि जिसका ब्याज हम नहीं पटा पाते। फिर हमें याद आती है सरकार की वो योजनाएं जो हमारे लिए वरदान सिद्ध होती है।
3: बहुत बढ़िया बात की। तो संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना क्या है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं
5: जी।
3: किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज पर अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना है
5: जी।
3: किसानों को क्या लाभ मिलता है और सामान्य रूप से पात्र अल्पकालिक कृषि ऋण पर ब्याज दरें 7% इसमें रखी गई हैं। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% जो है वो इंटेंसिव भी मिलता है जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% तक हो जाता है।
5: बिल्कुल प्रतिमा, क्योंकि हमारे किसान भाई बहनों को जब आवश्यकता होती है तब ऐसे धन की आवश्यकता होती है कि उस पे हमें अधिक ब्याज ना देना पड़े, हमारी कृषि का उत्पादन बना रहे और उस समय तक जब तक हमारी फसल पक कर तैयार होती है हमें समय मिल जाए कि हम जाएं अपना ब्याज सहित जो भी हमारा ऋण है वो पूरा हो जाए। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना, हमें जरूर इसका लाभ उठाना चाहिए
3: जी। और योजना में खेती के साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं
5: जी।
3: साथ ही 2025-26 में MISS के तहत KCC

0: ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की घोषणा भी की गई है। तो है ना खुशी की बात हमारे किसान भाइयों के लिए।
1: और एक और बात प्रतिमा कि हम इसमें बिना किसी गारंटी के हम 2 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है हमारे किसान भाइयों को कि भाई अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, 2 फोटो ये लेकर के आप बैंक में जाएं। और सबसे अच्छी बात कि अब बैंक में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे डिजिटल रूप में भी यह ऋण प्राप्त कर सकते हैं और संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
0: तो किसान भाई बहनों, ये थी चर्चा संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना पर। और अमित, अब हमारे किसान भाई बहनों को आप कौन सी बातचीत सुनवाने जा रहे हैं?
1: भाई, कार्यक्रम में हम ऐसी बातचीत लेकर ही आते हैं जिससे हमारा जो कृषि जीवन है वो उन्नत होता है। कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की सोच हमारे किसान भाइयों तक पहुंचती है, खेत खलिहान खिलखिलाते हैं, उत्पादन अच्छा होता है। तो आज बात रहेगी सरसों की उन्नत किस्में और बुआई।
0: और हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर SS राठौर, अध्यक्ष सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
1: तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: साथियों, रबी का मौसम दस्तक दे चुका है और किसानों ने अगली फसल की तैयारी शुरू कर दी है। रबी की प्रमुख तिलहनी फसलों में सरसों का अपना खास महत्व है। ये हमारे भोजन में इस्तेमाल होने वाले खाद्य तेल का एक महत्वपूर्ण स्रोत और किसानों के लिए भी अच्छी आय देने वाली फसल बन सकती है। लेकिन अच्छी उपज के लिए सिर्फ अच्छी किस्म का बीज होना काफी नहीं है। सही समय पर बुआई, खेत की उचित तैयारी, उन्नत किस्म का चुनाव, बीज उपचार, संतुलित पोषण और बुआई के बाद की सही देखभाल, इन सभी का अपना महत्व है। तो इस बार सरसों की फसल बेहतर उत्पादन पाने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखें, बुवाई का क्या सही समय है और अच्छे अंकुरण के लिए किसान क्या क्या सावधानी बरतें, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर संजय सिंह राठौर को। आप अध्यक्ष हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रबी की फसलों के समय की बात करें तो सरसों की खेती के लिए ये मौसम कितना अनुकूल है और देश के किन किन क्षेत्रों में इसकी खेती जो है वो प्रमुखता से की जाती है?
3: जी हाँ, आपने एकदम सही कहा। अभी जो रबी का मौसम है वो दस्तक दे चुका है और एकदम सही समय है कई सारी रबी फसलों की बुवाई करने के लिए। और रबी के मौसम में तिलहनी फसलों की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो सरसों की फसल होती है और इसकी बुवाई के लिए जैसे देखा गया है कई जगह पे तो जहाँ जल्दी बुवाई करते हैं 5 अक्टूबर के बाद बुवाई शुरू कर देते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि 10 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर का जो समय होता है वो सरसों की बुवाई के लिए एकदम उपयुक्त समय होता है। इसके साथ साथ हम और भी देखें तिलहनी फसलों के बारे में तो पूरा जो हमारे मुख्य रूप से हमारे देश में जो तिलहनी फसलें हैं उसमें आप देखें सरसों की फसल है, सोयाबीन है और मूंगफली है, तीन फसलों का विशेष योगदान है। और इन सारी फसलों में सबसे ज्यादा अभी उत्पादन हमारे यहाँ देश में जो हो रहा है वो सरसों का ही हो रहा है। ये करीब अगर हम बात करें अभी इसमें 130 लाख टन से ज्यादा है हमारे सरसों का उत्पादन हो रहा है। और हम अगर हम बात करें कि कौन कौन राज्यों में सरसों की मुख्य रूप से खेती की जाती है, सबसे अग्रणी राज्य जो है सरसों के उत्पादन में वो हमारा राजस्थान है। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में सरसों की खेती की जाती है। अगर हम देखें तो वहां की जिस तरीके से जलवायु है, मिट्टी की दशा है, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके हिसाब से सरसों की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त राज्य है वो हमारा राजस्थान ही है। करीब 40% पूरे देश का क्षेत्रफल और प्रोडक्शन केवल राजस्थान से आता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर सरसों की खेती की जाती है, हरियाणा भी एक प्रमुख राज्य है जहाँ पर सरसों की खेती हो रही है, इसके अलावा गुजरात है और मध्य प्रदेश भी एक प्रमुख राज्य है जहाँ पर एक क्षेत्रफल जो है वो सरसों की खेती के अंतर्गत है। इसके अलावा हम बात करें तो कई सारे राज्यों में जहाँ पर हम बोलते हैं कि राइस फैलो, राय धान लगाने के बाद में वो खेत को खाली रखते हैं जी। तो वहाँ पर क्या होता है थोड़ा देर से बुवाई की जाती है। हमारे पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत आता है इसमें, जहाँ पर दिसंबर में, नवंबर के लास्ट में दिसंबर तक जो सरसों की बुवाई की जाती है तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि लेट या देर से बुवाई करने वाली किस्में उनका हम चयन करते हैं। वहाँ पे काफी बड़ा क्षेत्रफल है जहाँ पर इसकी खेती की जाती है और सही समय बुवाई का इन राज्यों में 10 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर का समय होता है, क्योंकि इस समय तापमान जो है कम होने लगता है। जैसे हम अक्टूबर के पहले सप्ताह में बुवाई कर देते हैं तो कई बार देखा गया है कि तापमान अधिक होने की वजह से कई तरह की समस्याएं आती है। मुख्य समस्या जो रहती है वो बीज के अंकुरण को लेकर के होती है। जब अंकुरण कम रहता है तो आगे चल के पौधों की संख्या भी कम रहती है और ये सब चीजें आगे चल करके कम उत्पादकता के लिए जिम्मेदार होती है।
2: जी डॉक्टर साहब, सरसों हमारे लिए तिलहन और खाद्य तेल के रूप में कितनी जरूरी है? किसानों के लिए इसकी एक लाभकारी फसल बनने में किन बातों की जो है वो भूमिका रहती है, उसके बारे में कुछ बताएं।
3: तिलहनी फसलों में हम सभी जानते हैं सरसों एक प्रमुख फसल है अपने देश की। तो देश का तिलहनी फसल जो मुख्य रूप से आप देखें सरसों का ही फसल होती है। सरसों का तेल व्यापक रूप से हमेशा प्रिफर करते हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए और स्वास्थ्य के हिसाब से

0: देखें तो इसमें जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से ये हार्ट के लिए भी अच्छा इसका ऑयल माना जाता है।
1: जी।
0: तो इसके अगर इसके स्वाद को लेकर के, इसकी पंजेंसी को लेकर के कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से सरसों का तेल प्रमुख रूप से उपयोग करने वाला खाद्य तेल अपने देश में है। अब अगर हम बात करें कि इसकी उत्पादकता अच्छी हम कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके हैं, सुझाव हैं, जिसके आधार पर अगर हम सरसों की खेती करें तो बड़े आराम से हम 20 से लेकर के 30 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। अभी हम देखें तो अपने देश में इसकी पैदावार करीब 13 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। रबी के मौसम में आप देखेंगे ज्यादातर जगह पर या तो गेहूं लगाते हैं उत्तर भारत में या कुछ जगह पर सरसों लगाते हैं। अगर हम दोनों फसलों की तुलना करें तो इस फसल की जो है जल मांग काफी कम होती है, पोषक तत्वों की मांग भी कम होती है, और ये भी देखा गया है जिन खेतों में सरसों की खेती की जाती है उन खेतों में दूसरी फसल जब सरसों के बाद दूसरी फसल लगाते हैं तो उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है। और ये भी देखा गया है कि सरसों की जो जड़ें होती हैं जड़ों में से कुछ रूट एग्जुडेट्स निकलते हैं जो मिट्टी में उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ में मिट्टी में ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाते हैं। इसलिए सरसों की खेती जिन खेतों में की जाती है जिन क्षेत्रों में की जाती है वहां मिट्टी का तुलनात्मक तरीके से देखें तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब हम बात करें कि इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें होती हैं, क्यों 13-14 क्विंटल तक हमारे जो है राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता है जबकि ये 30 क्विंटल तक हो सकती है। और कई किसान भाई चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, वो 25 से 30 क्विंटल तक पैदावार आराम से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे कि बताया कि सरसों की बुआई का ये सही समय चल रहा है, 5 अक्टूबर से जो है इसकी बुआई शुरू हो जाती है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर जो है वो अक्टूबर के महीने में ही इसकी बुआई हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे किसानों के हित के बारे में कि उन्हें ज्यादा अच्छी पैदावार मिले, लागत कम लगे, तो उसके लिए कुछ तैयारियां पहले से करनी बहुत जरूरी होती है। तो ऐसे में वो खेत की तैयारी किस तरीके से करें कि जिससे कि उन्हें इसकी खेती में लाभ हो?
0: ये बहुत जरूरी है कि आप खेत की तैयारी अच्छी प्रकार से करें, और खरीफ की फसलें अगर आपके खेत खाली हो गया है आप कटाई कर चुके हैं उसके बाद में सुनिश्चित करें कि खेत में बढ़िया से उसको तैयार करें, उसमें ढीले नहीं होने चाहिए और साथ में मिट्टी में नमी का स्तर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं सरसों का बीज बहुत छोटा होता है और इसमें अगर मिट्टी में नमी का लेवल ठीक नहीं है, इसके अलावा हमने अगर गहरी बुवाई कर दी तो कई बार होता है कि बीज ऊपर निकल के नहीं आ पाता है। तो खेत की तैयारी बढ़िया से करें, इसके लिए हम 2-3 कल्टीवेटर लगा करके बाद में पाटा लगा करके नमी को सुरक्षित कर सकते हैं। और वैसे तो सरसों की फसल में कम पानी की आवश्यकता होती है, और अगर हम देखें अगर आपने नमी संरक्षण किया हुआ है साथ ही उसके साथ अगर ठीक ठाक से आपके क्षेत्र में बरसात हुई है तो वो नमी का स्तर भी पर्याप्त रहेगा अच्छे अंकुरण के लिए। लेकिन जहां मिट्टी बहुत ज्यादा सूख गई है, ढेले पड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि इसमें पानी की आवश्यकता है, तो एक फलेवा लगा करके फिर खेत को तैयार करें। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बगैर जुताई के भी हम खेत को तैयार कर सकते हैं, इसको हम जीरो टिल मस्टर्ड सोइंग करके बोलते हैं। इसमें ऐसी मशीनें हैं जिन मशीनों का हम इस्तेमाल करके जैसे आपने खरीफ में जो भी फसल लगाई हो उसके बाद तुरंत बाद नमी का स्तर अगर अच्छा है तो सरसों की बुवाई कर सकते हैं। और ये अगर फर्टिसाइड ड्रिल है तो उसमें फर्टिलाइजर को भी आप इस्तेमाल करके जो आपका DAP है या कुछ जो मात्रा हमारी यूरिया की भी रहती है, इसके अलावा पोटास भी रहता है, उसको हम बीज और फर्टिलाइजर दोनों को उर्वरकों को एक साथ फर्टिकम सीड ड्रिल जो जीरो सीड ड्रिल होती है उसे लेकर के बगैर जुताई की भी बुवाई कर सकते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारा देश जो है विविधता के लिए जाना जाता है तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की किस्में भी लगाई जाती हैं, तो किसान भाई जो है वो किस तरीके से अपने क्षेत्र के हिसाब से सरसों की जो उन्नतशील किस्में हैं उनका चुनाव किस तरीके से करें और उनको बोने से पहले बीज उपचार कितना जरूरी है और किस तरीके से करें उसके बारे में बताएं?
0: जी हाँ, ये बहुत जरूरी हो जाता है जब आप सरसों की फसल लगाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी किस्म जिसकी संतति की है जो नई है और उसकी पैदावार अच्छी आती है और जिसमें बीमारी के मकोड़े कम लगते हों। अगर हम बात करें तो ऐसे हमारे पुस्तक संस्थान से सरसों की कई सारी किस्मों का विकास किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें जैसे आपको अल्पावधि में सरसों चाहिए तो पूसा सरसों 28, पूसा सरसों 27 ये अच्छी किस्में हैं। इसके अलावा जो अभी हाल ही में पूसा सरसों 37 और पूसा सरसों 38 ये भी ऐसी किस्में जिनका बीज जो है काफी मोटा होता है, बोल्ड होता है और 30 क्विंटल तक बड़े आराम से इसकी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप क्वालिटी मस्टर्ड लगाना चाहते हैं जिसमें कई जगह होता है जैसे उसमें ग्लूकोसिनोलेट कम रहे, यूरिसिक एसिड कम रहे, तो ऐसी भी कई सारी किस्में हैं जो पूसा संस्थान से विकसित की गई, जिसमें PDZ1 है, PDZ11 है, PDZ12 है, PDZ14 है, 15 है, तो ये सारी किस्में जो है 25 से 30 क्विंटल तक पैदावार दे सकती हैं। इसके अलावा हम देखें जैसे सरसों अनुसंधान जो हमारा केंद्र है भरतपुर में राजस्थान में, वहां से भी कुछ किस्मों का विकास किया गया जिसमें राधिका है, ब्रजराज है, गजराज है, ये भी अच्छी किस्में हैं और ये जैसे ब्रजराज वगैरह है इसको आप लेट में भी बुवाई कर सकते हैं।
1: जी

0: डॉक्टर साहब, बीज उपचार के बारे में जानना चाहेंगे आपसे।
1: बीज उपचार देखिए, कई सारी बीमारी होती हैं वो बीज जनित भी होती हैं। जैसे हम बात करें तनागलन की, तो तनागलन सरसों की बहुत गंभीर एक समस्या है और इसमें कई बार क्या होता है, इसके जो स्कॉर्च होते हैं वो सीड बीज के साथ में आ जाते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम बीज को अच्छे से उपचारित करके बुवाई करें। ये देखा गया कि सेलाइन जो नमक मिला करके घोल बना करके हम उसमें सरसों के बीज को उपचारित करें तो जो स्कॉर्च रहते हैं ऊपर आ जाते हैं, उसको हटा के हम अलग कर सकते हैं और बीज को हम बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कुछ हमारी, जैसे इसमें कई सारी बीमारी जो होती है वो फफूंदी की वजह से होती है, चाहे हम तनागलन की बात करें, चाहे सफेद रोली की बात करें, चाहे ऑल्टरनेटिव ब्लाइट की बात करें, ये सारी जो है फफूंदी के कारण होती है। फफूंदी वाली बीमारियों को रोकने के लिए कई सारी अच्छी दवाइयां, जिसमें हम बात करेंगे बाविस्टीन का 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करेंगे तो हमको इसका बहुत अच्छा असर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा राडोमिल MZ करके होता है, उसकी भी करीब 6 ग्राम की दवाई को 1 किलो बीज में उपचारित करने से अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिला है। इसके साथ साथ में जैसे कुछ बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं, उनको भी हम बीज से उपचारित कर सकते हैं, जिसमें एजोस्पर्म हो गया, आजकल कंसोर्सिया आ रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों पोषक तत्वों को मोबिलाइज करने की क्षमता होती है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोडर्मा को 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करें तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन ध्यान रखें, जब आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले FIR को ध्यान में रखें। FIR का मतलब होता है पहले फंजीसाइड यानी जो फफूंदी नाशक है उनका इस्तेमाल करें, उसके बाद इंसेक्टीसाइड का इस्तेमाल करें जो कीड़े मकोड़े के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और लास्ट में जैसे आपको वाइफ फर्टिलाइजर हो गया, जैसे राइजोबियम हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया या एजोस्पर्म हो गया, उसका इस्तेमाल करें, इससे आपको अच्छा जो है जर्मिनेशन होगा, अच्छी पैदावार मिलेगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने खेत की तैयारी कर ली, बीज भी उपचारित कर लिया, लेकिन कहते हैं कि अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती है, तो अगर हम बीज की मात्रा की बात करें, कम न ज्यादा, तो कितने बीज जो है वो जरूरी होते हैं, कितने खेत में, और उनकी क्या मात्रा होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताएं, कितनी दूरी में हमें बीज जो है वो लगाने चाहिए।
1: जी हाँ, ये बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार आप जब बुवाई करने जाते हैं तो आपको बताना चाहिए कि सरसों का बीज कितना लगेगा, स्पेसिंग क्या होना चाहिए। ये देखा गया 4 से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है, और इतने बीज से भी बहुत ज्यादा पौधों की संख्या हो जाती है, तो हमें बाद में चल के बेल्डी कार्ड के माध्यम से पौधों की संख्या को कम करना पड़ता है। अगर बुवाई अंतराल की बात करें, खास करके स्पेसिंग की बात करें, तो 30 से लेकर के 45 सेंटीमीटर जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी, जैसे हम बेल्डी कार्ड करते हैं, थिनिंग करते हैं, तो उसमें कोशिश करते हैं कि 5 से लेकर के 10 सेंटीमीटर दो पौधे से पौधे की दूरी रहे। अगर पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर में ठीक रहेगी तो ये सुनिश्चित करता है कि हमको अच्छी पैदावार मिलेगी। और जो हमने पंक्ति से पंक्ति की दूरी या पौधे से पौधे की दूरी के बारे में बात किया, जब इस तरीके से हम बुवाई करेंगे तो निश्चित रूप से जो 1 हेक्टेयर में वांछित संख्या है पौधों की वो रहेगी, इससे पौधों में आपस में कॉम्पिटिशन कम रहेगा और एक दूसरे को ये पूरक का काम करेंगे, और जो भी हम इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, चाहे उसमें उर्वरक हो, चाहे पानी हो, और भी जो इनपुट्स होते हैं, उनका दक्षतापूर्वक उसमें उपयोग होगा।
0: जी, कई बार हम ये देखते हैं डॉक्टर साहब कि किसान जो है अच्छी गुणवत्ता का बीज डालते हैं, लेकिन उसके बावजूद कमजोर या असमान जो है अंकुरण की समस्या उन्हें देखने में आती है, तो वो ऐसा क्या करें जिससे कि एक समान अंकुरण हो और अच्छे अंकुरण हो, तो इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: पहली बात तो यह है कि बीज जो है आप ऐसी जगह से खरीदें जिसमें प्रामाणिकता हो, कोई सरकारी संस्थान हो गए, पूसा संस्थान हो गया या NSC हो गया, जहाँ से भी आप बीज ले रहे हैं आपको भरोसा होना चाहिए कि बीज उत्तम क्वालिटी का आपको मिल रहा है। उत्तम क्वालिटी का बीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीज जब खराब रहता है उसमें उसकी वायबिलिटी कम रहती है, तो उसके बाद क्या होता है, हम कितना भी काम करें हमको जर्मिनेशन अच्छा नहीं मिल पाता है। दूसरी बात ये होती है, देखा गया जो जल्दी बुवाई करते हैं तो कई बार क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, पौधे उतने नहीं उग पाते हैं, और ये जल्दी बुवाई करने पर ये भी देखा गया है कि आगे उसमें जो है कीड़ा लग जाता है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ऐसे कीड़े अगर खेतों का प्रकोप खेत में, तो हमको क्लोरपाइरीफॉस करके इंसेक्टीसाइड दवाई होती है उसके पाउडर को करीब 20 किलो के आसपास 1 हेक्टेयर के हिसाब से भरक देंगे बुवाई के टाइम पर, तो ये कीड़े का प्रकोप कम रहेगा और पौधों की संख्या सुनिश्चित रहेगी। इसमें ये भी देखा गया है कि कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, बुवाई जो है अधिक गहराई पे कर देते हैं, तो 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई बुवाई नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा गहराई पे बुवाई करेंगे तो इसका बीज बहुत छोटा होता है, इसका जो पौधा होता है शुरू की अवस्था में बहुत ही टेंडर होता है और वो बाद में खेत में ऊपर नहीं निकल पाता है, तो इन कुछ बातों का हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमको अच्छे अंकुरण मिल सकता है।
0: जी, और डॉक्टर साहब, अगर अब हम बात करें पोषण प्रबंधन की, तो सरसों की फसल में प्रमुख पोषक तत्वों के अलावा किन किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे कि किसान मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद और उर्वरक प्रबंधन कर सके?
1: जी हाँ, अच्छे पैदावार में अगर हम बात करें तो एक पोषक तत्व प्रबंधन, जी, इसका एक बहुत विशेष योगदान रहता है। और कई जगह किसान भाई थोड़ा गलती करते हैं, उनको लगता है कि सरसों को जहाँ कुछ नहीं लग रहा है मैं सरसों लगा दो और इसमें कोई प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई चीज मैनेज नहीं करनी है हमको। लेकिन ये फसल बहुत ही रेस्पॉन्सिव फसल होती है, मतलब अगर अच्छा प्रबंधन करेंगे, अच्छी खेती करेंगे तो आपको बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। 30 क्विंटल तक बड़े आराम से आप फसल की पैदावार ले सकते हैं सरसों की। तो इसमें पोषक प्रबंधन करने के लिए अगर आप देखिए, आपने अभी बताया सबसे बड़े तरीका ये होता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो होता है उसको आप देखिएगा, उसमें जनरली बताया जाता है कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, दूसरे पोषक तत्वों का क्या स्तर है और आप कौन सी फसल लगाने वाले हैं, उस फसल में कितनी पैदावार लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से कौन कौन से उर्वरकों की आवश्यकता है, सारा उसमें रहता है। तो अगर हम देखें कई जगह पर जहां सरसों लगाई जा रही है तो मुख्य रूप से हमने देखा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इनका तो एक समान तरीके से इनकी कमी पाई जाती है। इसके अलावा जैसे सरसों की फसल में तेल वाली फसल है तो सल्फर की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, सल्फर भी कई क्षेत्रों में बहुत कम हो रहा है तो हमको सल्फर भी देना पड़ेगा। और माइक्रो एलिमेंट्स या सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो कई जैसे जिंक की कमी हो जाती है, बोरन की कमी हो जाती है तो उनको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम बात करें वैज्ञानिक संतुति की तो उसमें हम जो सिंचित एरिया है वहां पर 80 से लेकर 100 किलो तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करने की संतुति की जाती है, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और इसी प्रकार से करीब 20 से 30 किलोग्राम सल्फर। और अगर बोरोन की कमी है तो 1 किलो बोरोन या 10 किलो बोराक्स और जिंक के लिए करीब हम 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई के पहले ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी बातों को अगर ध्यान रखेंगे और मिट्टी की जांच कराएंगे और पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे और एक तरीके से संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करेंगे तो ये सुनिश्चित करेगा कि हम अपनी सरसों की फसल से अच्छी पैदावार ले सकें।
0: जी तो साथियों, सरसों की फसल की अच्छी पैदावार की शुरुआत बुवाई से ही हो जाती है। सही समय, अच्छी उन्नत किस्म, गुणवत्तापूर्ण बीज, बीज उपचार और संतुलित पोषण प्रबंधन, ये सभी बेहतर फसल की मजबूत नींव है। ऐसी ही खेती किसानी से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार
2: मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत सरसों की उन्नत किस्में और बुवाई। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर SS राठौर, अध्यक्ष सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से।
3: और अमित, अब वक्त है हमारे किसान भाई बहनों के लिए मनोरंजन का। अब देखिए, नवरात्र आने ही वाले हैं, यानी कि कल से ही शुरुआत हो रही है
2: जी।
3: और माँ शक्ति की आराधना का ये पर्व है और इसमें हमारे सभी किसान भाई बहन चाहते हैं कि जो भी उन्होंने फसल अपने खेतों में लगाई है उसका कई गुना उत्पादन मिले और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, सभी परेशानियां दूर हो जाए। तो आइए हम भी नवरात्र पर एक खूबसूरत सी माता की भेंट सुनवाते हैं।
2: बिल्कुल।
4: ओ जय हो मैया शेरावाली, ओ तुझको दुर्गा कहो या काली, हो कितने नाम मां, हो सारे जग

0: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये माता की भेंट कार्यक्रम किसान वाणी में। जहां मनोरंजन का आपका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है, वहीं बात होती है हमारे किसानों के लिए कृषि जीवन को आसान बनाते हुए मौसम की, क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान हमारे प्रत्येक किसान भाई के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि कृषि में श्रम।
1: तो फिर देर किस बात की अमित, सुना दीजिए मौसम का हाल भी।
0: जी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली और NCR के क्षेत्र में आंशिक बादल छाए रहेंगे, वहीं कुछ बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो यह 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो प्रतिमा जी, अब समय है कार्यक्रम में कृषि सलाह का।
1: जी,
0: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की अक्टूबर माह में हमारे किसान भाइयों को सलाह है कि अगेती मटर की जो बुवाई ना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और उन्नत किस्म पूसा प्रगति का प्रयोग करें। बीजों को कवकनाशी कैप्टन या थायरोन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचारित करें। उसके बाद फसल में विशेष राइजोबियम नाम का टीका अवश्य लगाएं।
1: और किसान भाइयों को एक और सलाह है कि इस मौसम में किसान अपने खेतों की नियमित निगरानी करें। यदि फसलों व सब्जियों में सफेद मक्खी चूसक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो इमिडाक्लोप्रिड दवाई 1.0 मिलीलीटर लेकर 3 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करें। और इस साथ ही किसान भाई बहनों को सलाह है कि इस मौसम में फसलों व सब्जियों में दीमक का प्रकोप होने की संभावना रहती है, इसलिए किसान भाई बहन फसलों की निगरानी करें और यदि प्रकोप दिखाई दे तो क्लोरोपाइरीफास 20 EC 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में लेकर सिंचाई जल के साथ छिड़क दें। तो अमित, हमारे किसान भाई बहनों को ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसकी हमें भी प्रतीक्षा रहती है, और किसान भाई बहनों से हमारी गुजारिश है कि वो अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना फीडबैक हमें जरूर भेजें। हमारा कार्यक्रम उनको कैसा लगता है, उनकी प्रतिक्रिया अगर हम तक पहुंचेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा कि हम कार्यक्रम को और भी बेहतर बना सकें।
0: बिल्कुल।
1: तो हम बता देते हैं अपने किसान भाई बहनों को, हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
0: मित्रों, आज के कार्यक्रम किसान वाणी में केवल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
6: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: पश्चिमा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने स्पॉन्सर प्रोग्राम किसान वाणी ने कुल चिसा को बखूब नसोना मना दो छह बजे उन्होंने असीमांग दिल्ली स्टेशन को हिंदी को बहुत नासोगन उन्नीस जमाना छह बजे मिल पाओ इंग्लिश को बहुत नसीमांग नांगन आकाशवाणी टूरा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, सुनने के लिए होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिश नाकाम कर दी है। इस बीच नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने व्यापक और कड़े प्रबंध किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन आज रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम तथा रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित है। 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गई। नई दिल्ली में 4 दिन के इस आयोजन में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं, बहुपक्षीय सहयोग और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन हुआ। इसमें ग्लोबल डिजिटल क्रिएटर के तौर पर भारत की स्थिति को और मजबूत किया। सीमाओं के बिना विस्तार थीम पर आधारित इस आयोजन के आखिरी दिन उच्च स्तरीय नीतियों और मानकीकरण को जमीनी स्तर पर लागू करने पर बल दिया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व वाले नहीं रह सकते। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों को याद किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने यात्रा के दौरान कॉकपिट में हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ मच्छर पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई के विमान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना को लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी लगभग 3,700 करोड़ रुपए की लागत की मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के बर्मिंघम में विश्व बॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। ISSF निशानेबाजी राइफल और पिस्टल विश्व कप आज से मिस्र के कायरा में शुरू हुआ। वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में 6 विकेट से हराया। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का 92वां सीजन कल से शुरू होगा। कुल 38 टीमें ट्रॉफी के लिए करेंगी मुकाबला और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण वाराणसी में आयोजित होगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल होंगे इस कार्यक्रम में शामिल।

0: आज कार्यक्रम को शुरू किया जाए। बावल के मैदान से आई हुई एक खुशखबरी के साथ, जहां भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के बर्रम में विश्व बावल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। असम के 23 वर्षीय पुतुल ने पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में दुनिया के तीसरे नंबर के स्कॉटिश खिलाड़ी इयान मैकलिन के हाथों सीधे सेटों में 5-8, 4-8 से हार के बाद कांस्य पदक से समझौता किया। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर के हरिमैन जुवैन को 4-4, 6-5 से पराजित किया था। वे इसके पिछले सीजन में क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गए थे। तो अपने तरीके का एक बेहद रोचक खेल, जहां पर कुछ बड़ी आकार की गेंदों के साथ हम निशाने साधते हैं मैदान की तरफ, तो वहां से भारत के लिए पदार्पण हुआ है इस ट्रॉफी में पदकों का। और बात निशानेबाजी की, जहां ISSF निशानेबाजी राइफल और पिस्टल विश्व कप आज से मिस्र के कायरो में शुरू हो गया है। इस दौरान कई भारतीय निशानेबाज पदकों के लिए निशाने साधते नजर आएंगे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: निशानेबाजी की दुनिया में एक बार फिर रोमांच और प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार है। प्रतियोगिता में 51 देशों के लगभग 385 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय टीम में कुल 35 निशानेबाज शामिल हैं। इनमें पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह के साथ एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पलक गुलिया जैसे प्रमुख नाम शामिल है। भारत के युवा निशानेबाज जोनाथन गेविन एंथनी पर भी निगाहें रहेंगी, जो जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रतियोगिता में राइफल और पिस्टल के व्यक्तिगत तथा मिक्स्ड टीम स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता अपनी लय और प्रदर्शन को परखने के साथ साथ साल के अंत में होने वाले ISSF विश्व कप फाइनल के लिए जगह बनाने का भी अहम अवसर है। 10 अक्टूबर को 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल की मिश्रित टीम स्पर्धाओं के साथ पदक मुकाबलों की शुरुआत होगी। मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल में पलक गुलिया, मुस्कान उदयवीर सिद्धू और अजेंद्र सिंह चौहान भारतीय चुनौती पेश करेंगे। वहीं एयर राइफल मिक्स्ड टीम में आलिया बोर से ख्याति चौधरी, श्रीकांत धनुष और पार्थ मुखीजा हिस्सा लेंगे। कहिया विश्व कप में भारतीय दल के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने और पदक तालिका में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की चुनौती होगी। अब देखना होगा कि भारतीय निशानेबाज अपने सटीक निशाने और शानदार प्रदर्शन से देश के लिए कितने पदक जीत पाते हैं। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स गैंग।
0: तो अब भारतीय खिलाड़ियों पे नजरें होंगी कि किस तरह से पदक जीते जाएं और जो फाइनल ISSF विश्व कप होता है उसके लिए अपने स्पॉट को फिक्स किया जाए। और इस पूरे टूर्नामेंट पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, ये तो हमने जान लिया कि कौन कौन खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, तो कब कब दर्शकों को उनके मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं?
2: जी शक्ति, कल से ही कई मुकाबले खेले जाएंगे, आज भी कुछ मुकाबले खेले गए। अगर हम 11 अक्टूबर कल की बात करें तो पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह और जोनाथन गेविन एंथनी सहित कई निशानेबाज निशाना साधते नजर आएंगे। वहीं अगर हम 12 अक्टूबर को देखें तो अर्जुन बाबूता, श्रीकांत धनुष और पार्थ मखेजा इसी स्पर्धा में मुकाबला करेंगे। और इसी दिन 12 अक्टूबर को ही महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान, दिव्या थडिगोल, सुबराजू और चिंकी यादव से भारतीय दल को काफी उम्मीदें रहेंगी। और अगर आगे बढ़े 14 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो

0: हॉकी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पलक गुलिया और रिदम सांगवान सहित भारतीय निशानेबाज प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे उस दिन भी शक्ति। और इसी दिन अगर हम 14 अक्टूबर की बात करें तो पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में विजयवीर सिद्धू और उदयवीर सिद्धू जैसे खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। और यही नहीं शक्ति, 15 अक्टूबर को भी कई मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले और अखिल शोरान पर खास नजरें होंगी। वहीं इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में अंजुम मैदगिल और मानिनी कौशिक हिस्सा लेंगे। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में आर्या बोरसे और स्मिता भोवाल सहित भारतीय निशानेबाज मैदान में उतरेंगे। तो ये काफी अहम टूर्नामेंट भी है, इस साल के अंत में वर्ल्ड कप भी होना है, तो उसके लिए इन खिलाड़ियों के पास अहम मौका होगा कि अपनी चुनौती पेश करें आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। और शक्ति ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अभी जो हाल ही में एशियन गेम्स हुआ है उसमें भारतीय निशानेबाजों का मिला जुला प्रदर्शन रहा। एक तरफ जहां नीरू ढांडा ने जो एक नई प्रतिभा के तौर पर निकल के आई, उनको फ्लैग बेयरर भी रही थी, उन्होंने कई पदक देश को दिलाए, लेकिन मनु भाकर जैसे खिलाड़ी जिनसे कई पदक की उम्मीद थी वो चूक गई। तो इन खिलाड़ियों के पास भी मौका है कि आगे चल के देश का प्रतिनिधित्व करें।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि कई नए खिलाड़ियों को सीखने का मौका मिलेगा कुछ वरिष्ठ और बड़े खिलाड़ियों के बीच में, और किस तरह से अपना स्टेज सेट करते हैं आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए ये देखने वाली बात होगी। निशानेबाजी के बाद अब कार्यक्रम में रुख करते हुए क्रिकेट के मैदान का, वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। फिलहाल रांची के JSC अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत से मिले 250 रन के लक्ष्य को मेहमान टीम ने 9 गेंद शेष रहते 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज के लिए मैच के हीरो कप्तान शाई होप रहे, जिन्होंने 45 गेंद में 102 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली।
2: श्रेयस अय्यर की मैनसिंग ब्लू ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 249 रन बनाए। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने 41 गेंदों पर 82 रन की शानदार पारी खेली। सैमसन के अलावा तिलक वर्मा ने 18 गेंद पर नाबाद 44, लोकल बॉय ईशान किशन ने 22 गेंद में 43 और कप्तान अय्यर ने 18 गेंद पर 40 रन की पारी खेली। मेहमान टीम के लिए रोस्टन चेज ने 3 और शिमर स्प्रिंगर ने 2 विकेट लिए। 250 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम पहले ही ओवर में 2 विकेट गवा बैठी। हालांकि इसके बाद कप्तान शाई होप ने एक छोर से तेज रफ्तार से रन बनाना शुरू किया और पहले रोमिन पावली के साथ 53 तथा शिरफिन रदरफोर्ड के साथ 120 रन की तेज साझेदारी करते हुए टीम को इस हाई स्कोरिंग मैच में बराबरी पर लाखड़ा किया। 178 रन पर 4th विकेट गिरने के बाद कप्तान ने रोमारियो शेफर्ड के साथ 13 गेंदों पर 34 रन जोड़ते हुए मैच अपने नाम करके टीम को श्रृंखला बराबरी पर ला दिया। भारत की ओर से मयंक ने 3 और कुलदीप यादव ने 1 विकेट हासिल किया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब दोनों टीमों के बीच श्रृंखला का 3rd मुकाबला शाम 7 बजे से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: प्रशांत, T20 का जो सबसे सफल रन चेज है 259 रन का दक्षिण अफ्रीका ने इसी वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ किया था, लेकिन कल का मुकाबला अगर देखा जाए जिस तरह भारतीय गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा, यदि भारत वो 259-260 के आंकड़े को पार भी करती तो जीतना मुश्किल था। सबसे बड़ा रनचेज भी देखने को मिल सकता था, ये लगातार एक दिवसीय श्रृंखला में भी हुआ और यहाँ पे भी वो सिलसिला जारी है कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी हमें जिता जिताया हुआ मैच में पीछे कर दे रही है।
0: बिल्कुल शक्ति, अगर कल के मुकाबले की भी बात की जाए तो 9 गेंद शेष रहते ही वेस्टइंडीज ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया और T20 में 250 रन का लक्ष्य बहुत बड़ा होता। अमूमन हम देखा करते थे कि ODIs में भी 250 रन विनिंग टोटल माना जाता था, लेकिन T20 में 250 रन अपने ही घरेलू मैदान पर डिफेंड ना कर पाना ये दर्शाता है कहीं ना कहीं गेंदबाजी में लूपहोल। अगर कल के मुकाबले की भी बात की जाए तो जो मयंक यादव, उन्होंने 3 ओवर में 36 रन दिए जो 12 की इकोनॉमी रेट से, अगर अर्शदीप सिंह जो 100 से ज्यादा विकेट ले चुके भारत के मेन पेसर्स में गिने जाते हैं, उन्होंने भी 4 ओवर में 45 रन दिए और 1 भी विकेट उनके हाथ नहीं लगा था। और अक्षर पटेल जो भी इंडिया के प्रोमिनेंट ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा के बाद, उन्होंने भी महज 3.3 गेंद पर 63 रन दिया था। और शक्ति यही नहीं, अगर हम एशियन गेम्स की भी बात करें जो फाइनल मुकाबला खेला गया था पाकिस्तान से, तो जब जब टीम परेशानी में नजर आ रही थी तब तब जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज जो एकमात्र हमारे पास है वो भारत को वापसी करा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला है जब से श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिली

0: के मुकाबले में भी कुलदीप यादव हो या शिवम दुबे हो, नवन धीर हो, सबने कहीं ना कहीं 12+ की इकोनॉमी रेट से प्रदर्शन किया है।
1: जी बिल्कुल, आपने बोहरा का जिक्र किया, बोहरा ने भारत की साख बचाई किस तरह से, तो
0: जी
1: क्या ये माना जाए कि क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स आपके सामने खड़े हैं तो भारत को वाकई वापस कहीं ना कहीं अब अपने उन पुराने खिलाड़ियों की जो शायद थोड़े से कह सकते हैं कि पेस बॉलिंग अटैक के अकॉर्डिंग उम्र दराज है, उनका रुख करने का समय आ रहा है, या फिर एक कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश होगी जहां पे एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स के बीच में संतुलन साधा जाए।
0: जी, कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार का सिलेक्शन ये दर्शाता है कि भारतीय टीम ने बहुत ट्राई किया यंग गेंदबाजों को, लेकिन उनसे वो आउटकम नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण वो अनुभव के पास जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मौका होगा मोहम्मद शमी के लिए, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने भुवनेश्वर कुमार को सेलेक्ट किया है T20 में, ये दर्शाता है कि एक दिवसीय क्रिकेट में भी उन्हें चुनने की बात रखी जा रही है, और मोहम्मद शमी के लिए भी अच्छा मौका होगा टीम में वापसी करने का।
1: जी बिल्कुल, और इसी क्रम में कई और खिलाड़ियों को भी अपना जलवा बिखेरने का मौका मिलेगा। कल से जहां रणजी ट्रॉफी का 92वां सीजन शुरू होने जा रहा है, देश के इस सबसे बड़े घरेलू रेड बॉल टूर्नामेंट में कुल 38 टीमें नजर आएंगी। पहले राउंड में कुछ बड़े भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिखेंगे जो बाद में न्यूजीलैंड के रेड बॉल दौरे के लिए इंडिया ए टीम में भी शामिल होंगे। प्रशांत
0: जी बिल्कुल, और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर जो डिफेंडिंग चैंपियन है अपने खिताब को बचा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका रिवॉर्ड भी मिलता है। शक्ति, हम आकिब नबी की बात करें तो भी टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो जम्मू कश्मीर ऐसे जगह से बहुत कम खिलाड़ी निकल के आते हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें से एक आकिब नबी थे। और अगर हम इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया से हारने के बाद पारस डोगरा की कप्तानी वाली टीम श्रीनगर में मध्य प्रदेश के खिलाफ वापसी करने की कोशिश करेगी, और कहीं कहीं प्रोमिनेंट प्लेयर भी हैं जो इस सीजन में खेलते नजर आएंगे। अगर हम कर्नाटक की बात करें शक्ति, तो वहां से KL राहुल जो टीम का हिस्सा, अभी शतक भी लगाया था उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में, यशस्वी जायसवाल जो है प्रोमिनेंट ओपनर है भारत के, रविंद्र जडेजा सौराष्ट्र के लिए, हैदराबाद के लिए मोहम्मद सिराज, राजस्थान के लिए मानव सुथार जो इंडिया के लिए भी खेलते हैं टेस्ट मैचेस में, तमिलनाडु के लिए वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार और आकाशदीप जैसे खिलाड़ी जो बंगाल का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में।
1: जी बिल्कुल, और जब आपकी टीम में, आपके प्लेइंग 11 में, आपके स्क्वाड में इस तरह के बड़े खिलाड़ी जुड़ते हैं
0: जी
1: तो ना सिर्फ टीम को मजबूती मिलती है बल्कि जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको भी देख के काफी कुछ नया जानने को, सीखने को मिलता है कि आप जब एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। कुछ
0: जी
1: खिलाड़ियों के लिए रणजी ट्रॉफी नेशनल टीम में वापसी का दावा पेश करने का भी एक बड़ा मौका होगी, जैसे कि मुंबई के सरफराज खान और कर्नाटक के करुण नायर, मुंबई के आयुष मात्रे भी चाहेंगे कि इसी ट्रॉफी के जरिए भारतीय टीम के दरवाजे पर दस्तक दी जाए।
0: बिल्कुल
1: पिछले सीजन में 37 विकेट हासिल करने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी मैदान पे वापसी कर रहे हैं, बंगाल की टीम का हिस्सा है, तो आपने जैसा कहा भी एक अच्छा मौका है उनके लिए भी।
0: जी बिल्कुल, और 4 सदस्यीय चयन समिति की नजरें विदर्भ के हर्ष दुबे, जिन्होंने IPL में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, प्रफुल्ल हिंगे, यश राठौर और उत्तर प्रदेश के लेग स्पिनर जिशान अंसारी पर भी होगी, उमेश यादव जो पंजाब के लिए खेलते हैं, हर्षल पटेल लगातार वो IPL में RCB के लिए और अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, मनदीप सिंह, हनुमा विहारी जैसे अनुभवी खिलाड़ी एवं मेंटोर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। शक्ति,
1: प्रशांत जल्दी जल्दी में हमें यह भी बता दीजिए कि इस बार ग्रुप का संतुलन और आंकड़े क्या कह रहे हैं।
0: ग्रुप ए की अगर बात करें शक्ति, तो उसमें बिहार, बड़ौदा, गोवा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश और विदर्भ को शामिल किया गया है। ग्रुप बी में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, त्रिपुरा, पंजाब और असम की टीमें शामिल है। वहीं ग्रुप सी में बंगाल, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र सर्विसेज और उड़ीसा को शामिल किया गया। वहीं ग्रुप डी में मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और रेलवे जैसी टीमें खेलती नजर आएंगी। शक्ति,
1: श्रोताओं को हम ये भी बता दें कि एक प्लेट ग्रुप भी होता है, क्योंकि हमारी जो अलाइट टीमें होती हैं उनके बजाय जो 6 टीमें जो नई होती हैं, तो इनका परफॉर्मेंस पिछले सीजन में थोड़ा सा कमतर रहता है, उनको शामिल किया जाता है। तो प्लेट ग्रुप पे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की टीमें होंगी। और अब कार्यक्रम में अंत में रुक कर लेते हैं फिट इंडिया संडे जोन साइकिल का, जिसका 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां पर नशा मुक्त युवा विकसित भारत विषय पर केंद्रित होकर के लोग साइकिल चलाएंगे और देंगे फिटनेस का संदेश। और इसी संदेश के साथ श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल ID sportscan@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी

0: इसी समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पूर्व पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदिस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्यूटली वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
2: इट इज रिग्रेटेबल दैट ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पूरी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली

0: ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, रोने के लिए तो होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवम्बर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
3: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
0: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजना

0: खाते में मिल रहा है।
1: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
0: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उप निदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार ने पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माही, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हाँ दोस्तों, आज बात ही कुछ ऐसी है जिसका हम ढोल डुग्गी नगाड़ा पीट पीट कर ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में अमरकांत के साथ आप सुनेंगे जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रेखा के फनकारी के किस्से कारनामे।
1: अरे वाह, क्या कथा थी मेरी, जरा बता दो।

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

रेखा, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी का चर्चा सारी दुनिया करती है। रेखा को अभिनय प्रतिभा विरासत में मिली। 1966 में दक्षिण भारतीय फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया और हिंदी फिल्मों में भी उन्हें बहुत ही कम उम्र में ब्रेक मिल गया। जी हाँ, 1970 में बनी फिल्म थी सावन भादो।

इस फिल्म के संगीत ने जहां एक तरफ बहुत धूम मचाई, वहीं रेखा को भी चर्चा के घेरे में ला खड़ा किया। चर्चा उनकी बेबाक अदाकारी की हुई और दूसरी तरफ फिल्मी पंडितों ने रेखा को देखकर यहां तक कह डाला, ये क्या चलेगी। लेकिन दोस्तों, रेखा ने आने वाले वक्त में अपनी मेहनत और लगन से अपने आलोचकों को ऐसा करारा जवाब दिया कि उन्हें भी कहना पड़ा।

ये खूबसूरत शोभा ऐसा चमका कि उसकी चमक के आगे सितारे भी शर्मा जाएं। रेखा की बेहतरीन अदाकारी तो आप कई फिल्मों में देख ही चुके हैं, उनकी अदाकारी का एक और

0: मस्तानों और अफसानों से घिरी रेखा हमेशा मीडिया के लिए एक हॉटकेक की तरह ही रही। विषय चाहे उनका फिजिकल मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक्टिंग हो या किस्सा किसी रोमांस का, मीडिया ने हमेशा उन्हें अपनी पत्रिकाओं के फ्रंट पेज पर ही रखा।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ही बातें करती हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई।

है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहे हम, कब तक यूं ही खामोश रहे और सहे हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में आज गिरा दे। क्यों दिल में सोचते हैं लोगों को बता दे, हाँ हमको मोहब्बत है

यूं तो रेखा ने तकरीबन सभी नायकों के साथ काम किया है, लेकिन रेखा की फिल्मी जोड़ियां रही जितेंद्र, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना और शशि कपूर जैसे कलाकारों के साथ। और उनकी जो सबसे सफल जोड़ी बनी वो थी अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा कई सफल फिल्मों में काम कर चुकी है, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, दो अनजाने, मिस्टर नटवरलाल सिलसिला, सुहाग, राम बलराम और खून पसीना।

कर की फिल्में तो हिट रही हैं, साथ ही उनकी फिल्मों के गाने भी एक से बढ़कर एक रहे हैं और ऐसी शानदार अदाकारा के विषय में बातें करने के लिए ये समय हमें बहुत कम सा लगता है।

0: अब विविध मार्के आपके अलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध है। बस आपको इतना कहना है, अलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी है, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है। आपकी अपनी
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी

बनाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। इंडिया वर्क्ड रेजोल्यूटली। वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर के हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर तक आवश्यक नगद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूद तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा। सरकार ने सोशल मीडिया के उस भ्रामक पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें ई कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर 5% का नया माल और सेवा कर GST लगाने की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि यह दावा गलत है। उसने बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 57वीं GST परिषद की सिफारिश के बाद GST दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व रोइंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अंतराल के बाद इस दीवाने की महफिल में हम और आप साथ साथ छाया के तेज सफर में। उसकी मोहब्बत क्या रंग लाई, उसे देखने की आरजू, उसे चाहने में खुशी, उसके साथ में जैसे पूरी कायनात मिल गई। उसे देखा तो लगा बहारों ने कोई ख्वाब देखा है, जैसे गुलिस्ता में अचानक किसी गुल ने मुस्कुरा कर अपनी खुशबू बिखेर दी हो।

इश्क में आशिक की बेचैनी यही तो होती है, महबूब नजर से ओझल हो जाए तो दिल उसे हर गली हर राह हर फिजा में तलाश करने लगता है। यही तो मैंने भी किया, कभी हवाओं से कभी घटाओं से तो कभी चांद से पूछता, क्या तुमने उसे देखा है। नजर उसकी तलाश में भटकती रही और जब महबूब को एक नजर देख लिया तो मत पूछिए दिल कहाँ।

मैंने आपसे मिलने की खुशी कभी अपना एक आलम है, लबों पर खामोशी, आंखों में ख्वाब और दिल में बेपनाह मोहब्बत, बस एक दीदार की चाहत में ये दीवाना सफर पर चल पड़ा।

इस दीवानों के दीवान के में कहीं हम खो न जाए छायगीत के सफर में क्या आप हुए ये सवाल एक जवाब के इंतजार में यही छोड़ जाते हैं। स्वीकार कीजिए मंशी वर्मा का नमस्कार शुभ रात्रि।